आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: pipu pip pipu pip pipu pip pipu।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: महाराज जी, आपने मतलब पहले भी मेरे को कहा था नाम जप करने को, तो मैं कर रहा था, लेकिन महाराज जब भी मतलब
2: कर रहा था, मैं नहीं आना कर रहा हूँ,
1: अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मतलब महाराज
2: लेकिन नहीं लगना, जैसे प्राणपन से लगा जाता है, ऐसे थोड़ी मन को परास्त करना कोई खेल है। जब तक
1: ये तो टेंशन होता रहता है, जो
2: कौन सा टेंशन, खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ।
1: जैसे महाराज जी, जैसे मैं मतलब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी मतलब 2 साल से नहीं हुआ, अभी 3रा साल, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा।
2: कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है, इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे, या ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा, हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ।
1: नहीं महाराज, मेरा मतलब है कि नाम तक छूट जाता है, टेंशन होता है कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा।
2: टेंशन क्यों लेते हैं यार, समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो, तो एक बार सुना दिया जाए हमको, तुम्हारे दिमाग में टेप हो जाएगा स्मृति, ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं, अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे, हम भगवान के अंश है, हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र, जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था, कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना, एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ा ही उनके हाथ में, वो बड़ा करा दे, जिसको बड़ा बना देते ना भगवान है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना, हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है, हे भगवान मैं आपका हूं, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है, दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा, भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूं, अब हमारा अमंगल नहीं हो सकता, समझ रहे ना। टेंशन किस बात की, टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार।
1: जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूं, मतलब इस बार हो
2: क्या,
1: मतलब इस बार मतलब पास हो जाओ 2 साल।
2: नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते, फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तो मैं कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, नहीं जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे, और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे, इस पर ध्यान रखना, अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है, एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक, अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था, धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था, और उनके संतान हुई थी, उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था, आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे, अब पराजित तो होना ही पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं, और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती, अचानक आक्रमण, मारे गए वो राजा, मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ाओ, कहा तू ही बचा सकती मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे, और महल में काट मार मचाए हुए थे कि कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रास और निकली, और सैनिकों का क्या है, ऊपर से ऐसे दिखाया गया दोना पत्तल, ऐसे उनका निकलने दो, ये तो दासी है, राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी सब पूरा परिवार मार डाला, वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी दासियां, बहुत प्रवीण होती हैं, तो दृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे उनकी शरण में गए, उसको राजकुमार बचाना था। तो उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं और ये मेरा पुत्र है, मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दासता में रख लें, उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया। ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया और वो बालक राज मंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मेट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे, तो पुत्री का हाथ दिखाया तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रास जी को, तो उनका इसका पति तो ये होगा। तो एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, जो सब सभा गई, सो जल्लाद बुलाए और कहा इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। अब दासी क्या चाल, अब वहां दासी को पता भी नहीं चल पाया, चंद्रराज जी को गायब कर दिया। अब चंद्रराज जी को जंगल में ले गए और उनको देवर्षि नारद जी ने, जब यहां दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे, तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था, कहा था मुख में रखे रहना, चरणामृत पान करते रहना और कृष्ण कृष्ण कृष्ण ऐसा बोलते रहना। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे, उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रराज जी को नाम का उपदेश किया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता हम क्यों लाए? तो उनका हमें तो पता नहीं, तो उनका तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। उनका हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारे दया है नहीं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारे उन्होंने देखा तो 6 उंगली थी, 1 उंगली काट ली और कहा राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होके गिर गए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वो जल्लाद वापस उंगली दिखाए कि मैं उनको मार डाला हूं। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र अगर अपने पंख कर ले तो राज लक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रराज जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में, उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रराज जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि के जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहां वो कर देने जा रहा था। उसने बहुत आराधना की थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी किसको घेरे हुए, तो जब गए तो देखा चंद्रराज जी सुंदर राजकुमार और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए, रुआने गए कर देने। बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो, हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पदवी देता हूं। छोटा राजा अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया और 10 वर्ष हो गए वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहां। तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि से कहा चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि वहां सम्मान पूर्वक कर दे दे तो ठीक है, नहीं उनका विनाश कर दो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। तो चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था कि जब से चंद्रराज जी उनके यहां राजकुमार बने, उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रराज जी भगवान का भजन करने वाले। दृष्ट बुद्धि नजदीक आया और कहा कर दे दो नहीं तो युद्ध करो। तो उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा है। चंद्रराज जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रराज जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने के लिए तैयार हैं, आप शांत रहिए। उसकी दृष्टि में दृष्टि मिली, उसने ये वही बालक है, क्योंकि नेत्र इसके वही है जो उनके घर में रहा था दासी पुत्र बल करके। तो चंदनवती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहां पाया? तो उन्होंने पूरी बात सुनाई, तो उन्होंने कहा अरे फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा, ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूं, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ, पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा और इसके बाद तुम बादशाह के पास जाओगे। कहा स्वीकार है। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए तो जिसके लिए लिखा जाता था, धर्म कहता था बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूं जाते ही विष दे दिया जाए, जाते ही भोजन में विष, हलाहल तुरंत मर जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे खोस लिया मुकुट के साइड में और गए। भगवान की इच्छा उस दिन उपवन में उन्होंने अपना घोड़ा रोका कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे उपवन में। और उपवन था वो राजकुमारियों का, और उसमें आई थी उनकी बेटी जिसका नाम था विषया। खेल खेल में देखा कि कोई राजकुमार ऐसे विश्राम कर रहा है मेरे राज्य में, नजदीक गई, चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली, खोली, लिखा था कि जाते ही विषया विष दे देना, जाते ही विष दे देना। पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, इतना सुंदर राजकुमार इसको विष दे देंगी, उसका नाम विषया था, तो विष के आगे केवल या बलानी थी, तो काजर की रेख से जो दूब का ऐसे लेके वैसे काजर करके या बना दिया विषया, जाते कुछ बिना बेचारे जाते ही विषया दे दे, और बस खोज दिया चली गई। देखो भगवान का विधान। अब वो जब जगे तो वहां गए तो जो दृष्ट बुद्धि का पुत्र था, बड़ा धर्मात्मा था, उसने आदर सत्कार, उनका पिताजी ने आपके पत्र दिया। जो पत्र देखा तो उन्होंने कहा पंडितों को बुलाओ, तुरंत ब्याह करो, पिताजी का आदेश, जाते ही विषया दे देना। अब बेटी से ब्याह हो गया, दो चार दिन हुए कोई सूचना नहीं पहुंची, तो दृष्ट बुद्धि ने कहा मामला क्या है। वो जब लौट के आए तो बड़ा पूरा नगर सजा था, उत्सव हुआ। उनका क्या उत्सव, बोले आपकी बेटी का ब्याह हो गया, किससे, बोले आपने राजकुमार भेजा था। अब उनको समझ में आया कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है। जब घर के अंदर गए तो देखा बेटी, और तो उसने कहा तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने दूंगा, मन में सोचा चाहे बेटी भी दवा रहे। चार जल्लादों को बुलाया और कहा देवी के मंदिर में जाओ। और उसे कहा बेटा अब तो दामाद हो गए हो तुम, पहला पूजन हमारे यहां देवी का होता है, अकेले जाया जाता है। उनको भय तो था नहीं, भगवान के तो भक्त थे। बोले आप पूजन करके आओ, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसा दामाद। और अंदर से जल रहा था और उधर चार जल्लाद लगा दिए देवी के मंदिर में, अभी अकेले देवी के मंदिर में। और इधर जो बादशाह था, बादशाह से पंडित लोग विचार के कह रहे कि इस समय यदि आप राजगद्दी पर बैठेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा, इस समय कोई दूसरा तत्कालीन राजा होना चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही चाहे। तो उनका कौन हो सकता है, तो वहां दृष्ट बुद्धि के जो बेटे थे वो वहां किसी कार्य से, उन्होंने कहा हमारे जीजा ऐसे हैं बड़े तेजस्वी प्रतापवान, आप देखेंगे, तो उनका इसी समय लाओ। तो वो दौड़े, पूछा कि कहां है, बोले देवी पूजन करने के, बाहर से ही पता चला। वो दौड़ के गए और बोले देवी पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, बादशाह बुला रहा है। अब ये जो मंदिर पहुंचे से काट के फेंक दिए गए, और वो बादशाह के पास गए, बादशाह ने तत्काल ताज रख दिया। दृष्ट बुद्धि को बुलाया कि नए राजा के स्वागत के लिए आप आइए। अब वो तो बादशाह है, सामने जो ही पहुंचे तो दृष्ट बुद्धि कांप गए, इशारे से पूछा कि हमारे पुत्र कहां है, बोले देवी पूजन, अरे बोले वो तो मार डाला गया होगा, पता लगा तो मार डाला गया। तब वो जाको राखे साइया मार सके न कोई, बादशाह बना ना, अगर भगवान रक्षक भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता, हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, या हम मर जाएंगे सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, आश्रय भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना, तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं, किसी भी विषय में हार जाए या किसानी में कोई व्यवधान या पढ़ाई में, अरे हम फिर जीतेंगे यार, संघर्ष ही जीवन है, उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो। तो जीवन नष्ट करने के बाद वहां कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में, क्या क्या कष्ट होता है। आप देखो ना ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा है, तो लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं, कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे नरक जाएंगे। तो हमें को मनुष्य जन्म मिला है, अब इतना भजन कर लेना है कि इससे नीचे न गिरे। अगर चांस मिले तो पुनः मनुष्य बने और धर्म पूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, भगवान का भजन करके जीवन पवित्र बनावें।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
14: रेडियो रिमझिम सुनने वाला सब श्रोतालो के दीपाली के तरफ से सुप्रभात प्रणाम। तो दोस्त लोग, रोज की तरह आज भी हम लेके आ गए बनी कुछ हर्बल उपाय, जोना के अपना के रवा रहम स्वस्थ और खुशहाल। कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल में। आई रवा खुशी के और दुगुना करे खातिर हम बताई कुछ हेल्थ टिप्स। श्रोतागण, आज हम सबसे पहले बताएं गोखरू के बारे में। लोग, गोखरू के पौधा जमीन पर फैलेला और प्राय सब जगह पावल जाला। विशेषकर खेत के आसपास, जंगल में और साधारण स्थान में भी वर्षा ऋतु में ये पौधा उग जाला। एकर गुण ये होला कि गोखरू अग्नि के बढ़ावे वाला, पित्तवात के शमन करे वाला, मूत्राशय के शुद्ध करे वाला, विपाक में मधुर, बल एवं पुष्टि दायक, शीतल, व्रीय वर्धक, पेशाब के रुकावट के दूर करे वाला, पथरी के गलावे वाला, वात रोग नाशक, सुजाक प्रेमी श्वास में गुणदायक। गर्भाशय के शोधन करे वाला, खांसी वात रोग और बवासीर दूर करे वाला, मूत्रपिंड के उत्तेजना देवे वाला, बंधत्व मिटावे वाला, हृदय रोग और प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन दूर करे वाला होला। यूनानी चिकित्सा पद्धति में एकर सुजाक प्रमेह, मूत्राशय और गुर्दा के पथरी नष्ट करे वाला, खुश्क तथा गरम मानल गई बा। नपुंसकता के दूर करे वाला और मूत्र के रुकावट ठीक करेला।

निर्दिष्ट मात्रा से अधिक सेवन कई जाए। ऐसे तिल्ली और गुर्दा की हानि पहुँचे के संभावना बढ़ जाला, साथ ही कफ जनित अनेक रोग भी उत्पन्न हो सकेला। तो दोस्त लोग आई जानल जाओ गोखरू के उपयोग से कौन कौन रोग से हमनी के छुटकारा पा सकता नी। मूत्र के रूके पर यानी मूत्रावरोध पे, गुर्दा के संक्रमण तथा प्रोस्टेंट ग्रंथि में सूजन होके या एकर आकार बढ़ जाए से मूत्र के प्रवाह प्राय बाधित हो जाला। ई रोग से मुक्ति पावे खातिर गोखरू के फल के चूर्ण 1 से 2 चम्मच एक ग्लास दूध में पका के सुबह और शाम लगातार पिए से मूत्र प्रवाह चालू हो जाला और मूत्र से संबंधित रोग भी मिट जाला। नपुंसकता में नियमित रूप से 6-6 घंटा के अंतराल पर 1-1 चम्मच गोखरू के फल के चूर्ण में आधा

0: नपुंसक नियमित रूप से सेवन कइल जाए कोनो भी अन्य कारण से होके वाला नपुंसकता दूर हो जाला। यौन शक्ति बढ़ावे और शीघ्र पतन रोके खातिर एक एक चम्मच गोखरू और शतावरी के चूर्ण एक कप पानी में उबाली और छान के पी ली। यौन क्षमता में वृद्धि हुई, साथ ही शीघ्र पतन की शिकायत भी दूर हो जाई। पेशाब में जलन, मसान या गुर्दा में संक्रमण होखे से प्रायः हो जाला। गोखरू फल और पत्ता के समान मात्रा में लेके पानी डाल के काढ़ा बनाई। काढ़ा छान के एक काढ़ा के दिन में 3 बार पिए से फौरन लाभ मिली। पथरी होके पे 1 चम्मच के मात्रा में दिन में 6-6 घंटा के बाद गोखरू के पंचांग के चूर्ण, गाय के दूध के साथ सेवन करी। आ विकल्प के रूप में बकरी के दूध से 1 चम्मच गोखरू के बीज के चूर्ण कई दिन तक लगातार लेवे से भी पथरी छोटा छोटा टुकड़ा में गल के टूट जाई और फिर मूत्र के साथ बाहर निकल जाई। सुविधा अनुसार दोनों में से कौनो एक उपाय करे, प्रमेह दूर करे और पुंसत्व शक्ति बढ़ावे खातिर गोखरू के फल, शतावरी, कोच के बीज, खीरेंटी और ताल मखना सबके समान मात्रा में लेके चूर्ण बना के 1-1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम गरम दूध के साथ लेवे से ये दोनों रोग तो नष्ट हो ही, साथ ही शरीर भी पहले के बजाय अधिक पुष्ट हो जाए। रोग में उपयोगी गोखरू के पाक, दोस्त लोग गोखरू के ताजा पाकल होकल फल के लेके कूट ली, फिर गाय के 1 किलो दूध में धीमा आंच पर धीरे धीरे पाके दी। आप बीच बीच में कलछी से हिलाते रही ताकि तले पर ना गल जाए। जब खोआ बने लगे तो इसमें 125 ग्राम गाय के दूध डाल के भुनी और 500 ग्राम चीनी के चाशनी पहले से बना के रखी। फिर मावा भून जाए के बाद उसमें चीनी के चाशनी डाल के थोड़ा देर पकाई, फिर आंच से उतार ली। अभी में लौंग, सौंठ, पीपल, हल्दी, जावित्री और जायफल के प्रत्येक 3-3 ग्राम लेके उसके चूर्ण बना के ई मिश्रण में डाल के अच्छा तरह मिला दी। यदि इसे अधिक शक्तिप्रद और प्रभावक बने के चाहतन एमे बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू आदि मेवा के कतरन भी डाल के रोजाना 10 से 15 ग्राम की मात्रा में गरम दूध से सेवन करी। नियमित रूप से कुछ समय तक ई योग के प्रयोग करते रहे से मूत्र रोग, प्रमेह और गर्भाशय की विकृति दूर हुई। इसे शरीर में बल वृद्धि हुई और शरीर पुष्ट भी हो जाए। उपचार के दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन ली, खटाई, मिर्च और मसाला आदि से भी परहेज करी। तो दोस्त लोग आज हमनी के जननी हसन गोखरू के बारे में। तो आज खातिर बस इतना ही, काहे कि अब समय हो गई बा रउआ से विदा लेवे के। एगो प्यारा सा मुस्कान के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के आ गया। आ रखे रहुआ आपन सेहत के ख्याल, आज माई ये सब नुस्खा के आ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894-18744।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाए को,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाए कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट

0: भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8669 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महा

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सभी प्रखंडों में पंचायत वार सहयोग शिविर का हुआ आयोजन, वन विभाग के द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित, टीबी मरीजों को जिला पदाधिकारी ने दी पोषण की पोटली, शराब तस्करों पर की गई बड़ी कार्रवाई और कई अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले के आज सभी प्रखंडों में पंचायत वार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सिधवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत में आयोजित शिविर में भाग लेकर आम जनता से संवाद किया तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने स्तर से अपने परिवार के सदस्यों की समय पर टीबी जांच अवश्य कराएं, ताकि बीमारी की शीघ्र पहचान कर प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सके। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई है। इन विद्यालयों में मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को इस अवसर का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए कहा कि महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने जीविका समूहों की भूमिका की भी सराहना करते हुए महिलाओं से अधिक संख्या में जीविका से जुड़कर स्वरोजगार एवं इससे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। शिविर के दौरान उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के समय पर पंजीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनकी आवश्यकता विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने में होती है। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड से संबंधित योजनाओं के समाधान, पात्र लाभुकों के नए राशन कार्ड बनाने तथा त्रुटियों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज ने वन प्रमंडल गोपालगंज के सहयोग से मनिंद्र प्रसाद मेमोरियल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से दिघवा धाम गढ़ देवी स्थान बैकुंठपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के जेंडर स्पेशलिस्ट मुन्ना कुमार शर्मा और अनिल कुमार ठाकुर तथा वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ ओम प्रकाश ठाकुर, लेखा सहायक मुकेश कुमार शाह और स्थानीय ग्रामीण जनता मौजूद रहे। विशेष रूप से ट्रस्ट के सचिव राकेश पटेल जी का सहयोग रहा। उन्होंने सभी प्रकार के पौधे और ग्रामीणों में मेक ग्रीन इंडिया का नारा देते हुए इस अभियान को पूर्ण करवाया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत भी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन की जानकारी देते हुए पात्र लाभुकों से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सहयोग शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने भी उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर आवश्यक आवेदन प्राप्त कर उसके शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने टीबी के इलाज को लेकर मरीजों को जागरूक किया है। इस दौरान मरीज को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निश्चय मित्र बनाकर मरीजों के घर जाकर पोषण की पोटली उन्हें उपलब्ध कराया। साथ ही मरीज को स्वास्थ्य प्रोटीन युक्त आहार एवं समय से दवा लेने का भी सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी ने यह संदेश दिया कि टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले को टीबी प्रिवेंटिव दवा भी लेना अनिवार्य है। जिलाधिकारी को मरीज अपने घर पर देखते हुए काफी प्रसन्न हुए। साथ ही पोषण की पोटली पाने के बाद मरीजों ने खुशी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने 505 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक कार भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए जुड़ौना संस्कृत पब्लिक स्कूल के समीप छापेमारी की, जहां एक गाड़ी से 55 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद की गई। साथ ही एक तस्कर अनूप कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी मीरगंज के सिंहा टोला के राम परीक्षण महतो का पुत्र है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने हरखौली पूरब टोला के पास भी छापेमारी की, जहां से एक कार पकड़ी गई। इस कार से 450 लीटर देशी शराब मिली। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। इस दौरान कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। उसको भी पकड़ने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कार और शराब को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कुचायकोट थाना की पुलिस ने 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक कार और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भटवा सिपाया मोड़ के पास छापेमारी की। इस दौरान एक कार और एक मोटरसाइकिल से 51 लीटर 705 मिलीलीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। इस मामले में आरोपी अभिषेक पांडे, पिता स्वर्गीय बैजनाथ पांडे साकिन टपरी थाना हाथा जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही राजा कुमार शाह पिता बैद्यनाथ शाह साकिन धारोपाली थाना केसरिया जिला मोतिहारी को भी गिरफ्तार किया गया। इनके गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को भी नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी नगर थाना क्षेत्र के ही रविंदर कुमार महतो है, जो हीरामन महतो का पुत्र है और सरिया वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। इस पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उत्पाद पुलिस ने पगड़ा क्षेत्र में छापेमारी करते हुए दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी कामेश्वर चौबे, जो कटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा राहुल कुमार, यह पढ़हरिया सिवान का निवासी है। इनके पास से 34 लीटर से अधिक शराब मिली है। इन दोनों को भी उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी विशंभरपुर के सल्लेपुर मटिहिनिया में छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी पुरुषोत्तम यादव बताया जा रहा है। जो थावे थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को उत्पाद पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसके निदान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रत्येक दिन काफी संख्या में फरियादी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज जिले के कई विद्यालयों में पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान साइबर अपराध से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में बच्चों को आवश्यक जानकारी दी गई। मोबाइल का इस्तेमाल करने और मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखने की जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को तेज गति से बढ़ रहे साइबर अपराध के प्रति सचेत किया गया और साइबर अपराध होने पर 1930 पर कॉल करने की भी जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी प्रखंडों में पंचायतवार सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। वन विभाग के द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। टीबी मरीजों को जिला पदाधिकारी ने दी पोषण की पोटली। शराब तस्करों पर की गई बड़ी कार्रवाई और कई अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।

यूनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे।

0: कमल श्री में।
1: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629335 38।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: अनेक जाति संसारंग संदा विसंग अनिभिसंग गह कारकंग गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न कायसी सब्बा ते फासुका बग्गा गह कूटंग विसंखितंग। हे ग्रह कारक, अनेकों बार इस संसार में मैंने जन्म लिया है, इस भव चक्र मेरा आवागमन जारी रहा है, लेकिन अब तुझे मैंने जान लिया है, समझ लिया है, अब तू पुनः घर नहीं बना सकता है, यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा, पुनः भवोति तीति, इस संसार में मेरा पुनः आगमन नहीं होगा।
1: बुद्ध को आनंद अनुभव हुआ, वो अपनी सारी जो सारा विराटता के साथ, पूरे संभूति के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकीभूत हो गए। एक उसे बात तो देखता है सारा हम, सारा सब कुछ हमें, हर कण कण में, हर में। और
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति फोटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
3: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
5: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
6: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉरपेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पर मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
6: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512100001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: What the hell?
5: नन्ही सी जान है, काफी गाढ़ा है, मारिए मत, हमें दे दीजिए।
6: कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं और कुछ करते हैं हमें आजाद।

कहीं ना कहीं आजाद को एहसास है कि उसकी जान विक्रम ठाकुर की दी हुई है। आजाद उनके लिए जान दे सकता है। इस जन्म में तो आजाद सिर्फ विक्रम ठाकुर का बन के रहेगा। किसी और का नहीं होगा बच्चे। आजाद

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
9: और 9097160602।
12: कई बार सही मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत रास्ते चुनने पड़ते हैं।

0: पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार के 26 जिलों में 38 आईसीयू का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर की एक अदालत ने काजवली चक विस्फोट मामले में 2 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य के 26 जिलों में 38 सघन चिकित्सा इकाइयों आईसीयू का निर्माण होगा। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी आईसीयू के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि केंद्र सरकार आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार से संबंधित कोई प्रशासनिक अनुमोदन प्रस्ताव लंबित नहीं है। विधानसभा में आज बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पंचायतें शुल्क वसूल सकेंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भवन का नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा की तर्ज पर गठित होने वाले प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। विधानसभा में कल इस विधेयक की प्रति सदस्यों के बीच वितरित की गई। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के लगभग 700 उच्च विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है।
1: पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया था तो लगभग 600 से 700 विद्यालय ऐसे थे जहां पर हमें जमीन उपलब्ध उस समय नहीं हो पाया। उस समय ये निर्णय हुआ कि जहां 2 रूम भी हैं वहां हम तत्काल शुरू कर दें। पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चल। माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई किया जाए।
0: विधानसभा ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजनों के लिए समपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में कृषि भूमि का व्यावसायिक या अन्य गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि के समपरिवर्तन की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2010 के कृषि भूमि समपरिवर्तन अधिनियम को निरस्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान लागू होने के बाद कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए अलग से समपरिवर्तन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
2: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात बिहार राज्य में बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजन के लिए संप्रवर्तन अधिनियम 2010 निरस्त हो जाएगा और लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगा, किसी तरह का एनओसी या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक निधि की राशि 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए करने की मांग की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान योजना एवं विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधायक निधि बढ़ाने का निर्णय वित्त विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। इसके अलावा सदस्यों ने विधायक निधि से बिना निविदा कराए जाने वाले कार्यों की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी मांग की। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि हर घर नलका जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी फिर से वार्ड सदस्यों को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। विधान परिषद में इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज मंत्री और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संयुक्त रूप से बैठक कर इस संबंध में निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। विधान परिषद में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार गैर व्यावसायिक निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रेल यात्रा रियायत की सुविधा दोबारा शुरू करने का अनुरोध रेल मंत्रालय से करेगी। गौरतलब है कि यह सुविधा कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी। बिहार विधानसभा के सभी विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पीएमआईएस पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। डॉ. कुमार ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विधायकों को एआई के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग से अवगत कराना और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की निगरानी के लिए विकसित पीएमआईएस पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल का प्रशिक्षण देना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भागलपुर की एक अदालत ने काजवली चक विस्फोट मामले में दो दोषियों मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक हेमकांत झा ने बताया कि तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों दोषियों को 10-10 साल कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी। वही अदालत ने दोनों दोषियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में 9-9 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
1: सत्रवाद संख्या 94-23 जो भागलपुर शहर में भयंकर विस्फोट हुआ था 2022 में काजवली चक में, जिसमें 14 आदमी मर गए थे, 10 आदमी घायल हो गए थे और 3 मंजिला बिल्डिंग उड़ गया था, उसी में 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल उनको दोषी पाया गया और सजा सुना दिया गया। मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है।
0: इधर बेगूसराय की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में 105 नए ICU बेड, 70 वेंटिलेटर युक्त गहन चिकित्सा इकाइयों और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में PPP मॉडल के तहत पहले चरण में 11 हब लैब और उनसे संबद्ध 221 स्पोक लैब के माध्यम से निशुल्क पैथोलॉजी सेवाएं भी आरंभ की जाएंगी। इसके अलावा राज्य के 25 अनुमंडल अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा का भी शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में 46,26,00,000 रुपए की लागत से निर्मित भद्रघाट, नौजरघाट और महावीर घाट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
3: दिनांक 22 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: दरभंगा जिले में रैयाम चीनी मिल सहकारी समिति की सदस्यता और गन्ना किसान पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 24 से 26 जुलाई तक केपटी, सिंहवाड़ा और मणिगाछी प्रखंड में शिविर लगाए जाएंगे। कैमूर जिले के मोहनिया स्थित समेकित जांच चौकी पर ट्रकों से कथित अवैध वसूली के आरोप में 3 सैप जवान और 1 होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 83,300 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुंगेर के चर्चित मधु कुमारी की मौत के मामले में फॉरेंसिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जांच से पता चला है कि मधु की हत्या उनके निलंबित दारोगा पति चंदन कुमार ने की थी। उन्होंने बताया कि मामले में जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के तीनगछिया मोहल्ले से पुलिस ने अपहरण और रंगदारी के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से पुलिस ने 155 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पार्क के केयरटेकर की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, चौथे चरण में शिक्षक भर्ती की अधियाचना इसी माह, विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, गांव में गरीबों से कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार। प्रभात खबर की सुर्खी है, पांचवी और अंतिम सक्षमता परीक्षा में 70% शिक्षक फेल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मुजफ्फरपुर के कनिष्क यूनाइटेड किंगडम में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, नीट पर पहली बार बोले पीएम मोदी, सरकार छात्रों के साथ। आज अखबार ने लिखा है, नीट आंदोलन प्रधानमंत्री आवास पहुंचा, राहुल प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में, देर शाम हुए रिहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार के 26 जिलों में 38 आईसीयू का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर की एक अदालत ने काजवलीचक विस्फोट मामले में 2 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
11: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
14: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
15: जी मैम नमस्कार।
14: नमस्कार,
15: कौन बोल रहे हैं? मैम
14: भारती।
15: जी कहना सुनना है?
14: आप अपना नाम बता दीजिए।
15: मैं सुजीत कुशवाहा बोल रहा हूँ श्यामपुर।
14: जी तो कौन सा गाना सुनना है?
15: वो कच्चे धागे का गाना जो है, प्यार नहीं करना जहां तारा घर है।
14: और सॉन्ग किसी को सुनाना है?
15: सभी को, सभी रेडियो सुनने वाले।
14: जी जी चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी सही है।
0: क्या नाम?
1: आपने इतना इतना ट्राई करने के बाद कॉल लगा, 40,000 कॉल करने के बाद लगा।
0: अच्छा, अभी तो 11
1: बहुत बिजी बिजी आ रहा था।
0: क्योंकि अभी शुरुआत हुआ ना, इस समय बहुत बिजी जाता है।
1: और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
0: और सब बढ़िया है। कौन सा गाना सुनना है?
1: पहले कॉल कर दिए।
0: जी
1: मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चमत्कार मूवी का सॉन्ग सुनना है।
0: कौन सा?
1: प्यार मेरी तरफ से देखो प्यार हो जाता है।
0: हाँ हाँ है। और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी मेरे तो पावर है, तो आपको भी सुन रहे
0: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
9: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 92.4 एफएम में। नमस्ते जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है? गाने बोल याद है?
12: अच्छा,
11: हम अपनी पसंद से लगा दें, आप नहीं बताइएगा।
12: आपने पसंद से लगा दीजिए
11: गाना। टैग सॉन्ग सुनना है?
12: अच्छा जी,
11: नहीं अभी तो नहीं आया उनका। लेकिन वो भी कॉल करते हैं, बराबर करते हैं।
12: हम नहीं चाहते कि थोड़ा मेरे आदमी को चिंता हो गया। हेलो, उनका ऐसे भी सुनते हो जाता है तो काम तो काफी होता
11: है। चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार, दिलीप राम।
0: नमस्कार,
1: और कैसे हैं?
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: बताया तो दिलीप राम पहले ही मिला। नमस्कार दिलीप राम, दिल्ली से।
0: अच्छा, आवाज कट कट के आ रहा था ना, नहीं सुनाई दिया।
1: हमारा तो लगता है कि आज नाचा करके दिल से आई है ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बढ़िया है?
0: हाँ हाँ बढ़िया है।
1: तो कल से बारिश खत्म हुआ कि अभी बारिश हो ही रहा है?
0: अभी तो रात भर पूरे बारिश हुई है और अभी जाके थोड़ा खुला हुआ है।
1: यहाँ तो दिल्ली में इतनी जबरदस्त उमस है, हम आए तो उसको बोले मैं लेके आया ही नहीं, तोड़ दिया उधर।
0: कोई नहीं, पार्सल कर देते हैं हम लोग, देखिए कितने दिनों में जाता है।
1: पार्सल कीजिए जल्दी, क्या है कि इधर भी जरूरी है थोड़ा बारिश।
0: पार्सल भी जाने में तो 4 दिन लग ही जाता है।
1: नहीं, 4 महीने अगर कीजिएगा।
0: अच्छा,
1: 48 घंटे में मिल जाएगा।
0: अच्छा जी, चलिए तो कोशिश करते हैं।
1: अगर 4 महीने अगर भेज देंगे तो जल्दी पहुँच जाएगा बारिश। ठीक है, तो ये गाना है,
0: बता दीजिए।
1: हरिहर की हरिहर की चुड़िया, कहने लोहिया हुआ हो, हरिहर की चुड़िया, खेसारी लाल उसका है।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको सुनाएंगे हम, और उसके बाद तमाम सुनने वाले जितने रेडियो इंजिन है उन सभी को।
0: चलिए फिर, ठीक है गाना।
1: जी तो नमस्कार, मिलते हैं थोड़ा 12 बजे शो में।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो इंजिन।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470-10-30-9-92 या 9765-65-750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97-644।
11: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
12: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, मैं सारा छत्तीसगढ़ से।
13: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
12: बढ़िया है।
13: तो नाश्ता हो गया है?
12: जी अभी तो हो गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ने आया हूँ।
13: अच्छा
12: जी,
13: चलिए। बारिश हो रहा है क्या उधर?
12: अभी 3-4 दिन में बारिश हुआ है।
13: अच्छा
12: हाँ जी,
13: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
12: निगाहें से सुनवा देंगे, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सभी साथियों को डेडिकेटेड है।
13: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब।
12: हाँ जी,
13: रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे।
1: गुड मॉर्निंग राधे राधे,
0: क्या हाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है, अपना भी चंद्रकिशोर जी बाल बोल रहा हूँ, सूरज जी। आप
1: अच्छा।
0: सॉन्ग सुना दीजिए, एक फिल्म का नाम है बागी और गाने की बोल है धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सॉन्ग डेडिकेट है आपको और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी लिखने।
1: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब।
0: क्या बात है मैम, मेरा एक बार में ही कॉल लग गया।
1: अच्छा, तो कॉल कटा
0: हुआ? ज्यादा नहीं मारना पड़ा, मतलब कॉल नहीं आ रहा है क्या?
1: आ रहा है अभी तो, जस्ट कटा के आधे सेकंड।
0: मतलब कितना दिन में पहली बार हुआ है कि मेरा फर्स्ट बार कॉल लगा, मतलब एक ही बार कॉल डायरेक्ट कॉल लग गया।
1: ये सब तो बढ़िया है।
0: मुझे भी अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, एक ही बार में कॉल लग गया।
1: नहीं, कॉल तो आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, अभी आने बाकी हैं।
0: ठीक।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्यघर।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94-512-11-001।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
12: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते,
15: कैसी है?
14: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
15: मैं भी अच्छी हूँ।
14: तो नाश्ता हो गया आपका?
15: नाश्ता भी हो गया है, खाना भी हो गया है आपका?
14: हाँ मेरा भी हो गया है। चलिए सब तो बढ़िया है, दोनों हो गया।
15: और बताइए सब कोई ठीक है ना?
14: सभी कोई ठीक है।
15: सुनी मैम नहीं आई है क्या?
14: आई है वो भी।
15: तो शो क्यों नहीं चल रहा है, बंद है रेडियो?
14: अच्छा चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप करना होता है ना।
15: अच्छा ठीक है, गाना सुनना है,
14: बता दीजिए कौन सा।
15: कोई भी।
14: कोई भी?
15: हाँ आज अपने पसंद से सुना दीजिए।
14: भोजपुरी में सुनिएगा, हिंदी में?
15: भोजपुरी।
14: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
15: हाँ और सभी को, रेडियो रिंग सुनने वाले।
14: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग।
15: थैंक यू,
14: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: हाँ नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए।
0: राम के।
1: और कहाँ से?
0: गोपालगंज से।
1: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनिएगा?
0: तो नदिया का पार गाना है, जैसा ना दिशा में लेकर चला रहे बटोरिया, वही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जितना मेरे सुना सब लोग का।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम, हर हर महादेव।
9: ब्रेक के बाद आप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, नमस्ते।
10: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
11: बालजीत सुंदर
10: जी, कैसे हैं आप?
11: ठीक है, आप बताइए।
10: हम भी अच्छे हैं।
11: नहीं नहीं नहीं, अच्छा थी ना, खोल बरसा भीजी न जाने।
10: हाँ है
11: जी जी, ये गाना सुन रहे हैं।
10: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
11: गाना फिर
10: अच्छा, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीत 90.4 एफएम।
11: जी नमस्ते।
10: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: मैं मनीष राजा टाइनर से बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: नहीं,
0: नहीं, अभी बारिश खुला हुआ है। आप क्या हो रहा है?
1: हमारे तरफ बारिश हो रहा है।
0: अच्छा,
1: गाना सुनना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा।
1: दिल वाले पिक्चर का कोई भी गाना सुना।
0: आवाज आ रही है क्या पीछे से? कुछ
1: बोल रहा हूँ, दिल वाले पिक्चर का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा, नया वाला दिल वाले या फिर पुराने का?
1: पुराने वाले का।
0: अच्छा, और कौन सा
1: कोई भी गाना सुने से।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले आपको रेडियो सुनने वाले को।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबसे। रेडियो 90.4 FM।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते,
10: अभी हमको तो गाना सुनना है।
9: बता दीजिए कौन सा?
10: बरसात के मौसम, बोलिए ना
9: जी।
10: हेलो, गाना नहीं है वो, बरसात के मौसम वो गाना हिंदी में। हाँ, वही बस गाना सुनना है हमको।
9: और गाना किसी को सुनाना भी है?
10: अभिषेक कुमार, ईश्वर प्रसाद, जगन्नाथ मिश्री, गोलू कुमार, मोहित कुमार, बस नहीं।
9: और आपका नाम?
10: महंत कुमार।
9: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: नमस्कार।
9: नमस्कार।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा

0: दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हां, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
9: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up. Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
12: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 91.4 एफएम में।
16: नमस्ते।
15: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
16: साहिल अंसारी।
15: जी,
16: साहिल अंसारी।
15: अच्छा, कैसे हैं आप?
16: ठीक है। खाना हो गया?
15: हाँ, मेरा हो गया। आपका?
16: हम सही है सर।
15: चलिए चलिए,
16: आपका क्या नाम है?
15: मेरा नाम भारती है।
16: तो गाना बता दीजिए।
15: बता दीजिए कौन सा? बता दीजिए कौन सा गाना?
16: गाना सुना दीजिए।
15: बता दीजिए कौन सा?
16: पवन सिंह का न्यू सॉन्ग।
15: पवन सिंह का न्यू सॉन्ग, गाने के कुछ बोल याद है आपको? क्योंकि न्यू सॉन्ग में तो बहुत सारे सॉन्ग निकले हुए हैं उनका भी।
16: तो भारत वाले पे बजा दीजिए।
15: बता दीजिए गाने के, अगर बोल याद हो तो, नहीं तो कोई भी।
16: हाँ।
15: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
16: आपको? और मेरे बहन सर को, और मेरे रेडियो परिवार को।
15: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4। कल या परसों।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते भारती जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के 90.2 एफएम में। जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: फिल्म का नाम है सनम देव
0: और गाने के बोल
1: चूरी मजा न देगा कंगन मजा तेरे जगह साजन।
0: सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: गुड्डू है, विकास है, पूरी गुड़िया सीमा है, हाथ है आपका टीम है।
0: जी चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.2 एफएम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
10: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ।
11: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना।
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: हेलो
14: जी नमस्कार मैडम जी। मैडम जी मैं मधुसूदन नगर जिला गुना से।
15: जी कैसे हैं आप?
14: बढ़िया है, वैसे सुन रहे हैं और बढ़िया दुकान पर बैठे हैं।
15: अच्छा
14: जी,
15: तो आज कौन सा गाना सुनना है?
14: जी मैडम जी, चरणा में जय विक्रांता।
15: और सॉन्ग?
14: और सॉन्ग है कोटे ऊपर कोटरी में उस पर रेल चला दूंगी।
15: अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट है?
14: जी सबसे पहले आपको है, गजराज सिंह लोधी जी है, गोपाल ओझा जी ककुपासा से है। और जी
15: और सब ठीक है ना?
14: ठीक है, हमारे यहाँ ऊपर लगी है। आपके यहाँ
15: क्या हो रहा है?
14: बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है आपके यहाँ?
15: नहीं, मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रहा, रात को हो रहा था बस।
14: हमारे यहाँ तो 8-10 दिन से पानी नहीं गिरा था, गर्मी से बेहाल है और फसल भी मुरझा रही जा रही है। पानी के लिए अगर 2-4 दिन और पानी नहीं मिलेगा तो फसल चली जाएगी हमारी।
15: अच्छा
14: जी,
15: नहीं ये तो मतलब बारिश घूम के चारों तरफ जा ही रहा है, देखिए आपके तरफ भी जाएगा,
14: क्या पता कब आएगा। जरूरी तो हमें अभी पड़ रही है पानी की।
15: होता है जब फसल की जरूरत होती है पानी की तो होता ही नहीं है, जब ना हो तब होता है।
14: जी जी जी, खाना हो गया आपका?
15: हाँ हो गया है।
14: ठीक है
15: चलिए फिर।
14: कब आएगा बहन जी?
15: जी
14: कब आएगा मेरा ये गाना?
15: आपको ये गाना कल या परसों आएगा।
14: तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज का प्रोग्राम आज ही लाइव कर दिया जाए तो अच्छा रहता है?
15: होता है लेकिन जब एक दिन डिले हो जाता है ना उसके बाद से, अब कॉल मान लीजिए फिर आज का रिकॉर्डिंग कर लिए तो ये तो अधिक हो ही जाएगा ना।
14: और आज कौन सी कॉल आएंगी शाम को 5 बजे से?
15: शुक्रवार को जो हुआ था ना रिकॉर्डिंग वो।
14: अच्छा,
15: क्योंकि वो अभी बजा नहीं है।
14: जी जी जी ठीक है,
15: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4।

0: हाँ जी नमस्कार, मैं लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
0: तो मैं गाना का फरमाइश करना था, प्यार काहे को बनाया राम ने।
1: अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ हाँ, हमारे सभी दोस्त लोग हैं, बाबूलाल हैं, गंगा सागर हैं और सभी दोस्त हैं हमारे साथ में, ये शाम को हम लोग सुनते हैं। तो क्या ये गाना आज बज जाएगा या कल बजेगा, कुछ अनुमान बताइएगा?
1: अनुमान तो कल ही परसों का है।
0: अच्छा जी,
1: हाँ हाँ
0: ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम लोग डेली सुनते हैं, फिर भी आज बज जाए तो चाहे कल बजे तो कोई बात नहीं है,
1: क्योंकि शुक्रवार वाला अभी कॉल बाकी है, वो बजा नहीं है।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, इस गाना को बजा दीजिएगा।
1: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: ओके ओके, धन्यवाद।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 8009294911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
1: Hello.

0: युवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-94-94-53
2: और 9097-61-60-02।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं, उस जगह का नाम और कौन से गाने सुनने हैं उस गाने का नाम टाइप करना है और हमारे नंबर 7277165696 पे सेंड करना है। बस बशर्ते ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते ही हैं यह कार्यक्रम स्पेशली पुराने गाने के लिए चलाए जाते हैं, तो ओल्ड इज गोल्ड या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। ऐसा ना हो कि आप अपने फरमाइश को लेकर इंतज़ार करें और हम आपके गाने ना सुनाएं नए गाने के वजह से। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ये बातें हम हर रोज़ कार्यक्रम को शुरू करते वक्त बताते हैं ताकि आप लोगों को जो भी श्रोतागढ़ पुराने हैं तो जानते हैं, नए जुड़ना चाहते हैं और सुन रहे हैं नए, वो भी थोड़ी सी जानकारी कार्यक्रम के बारे में हासिल कर लें। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे मैसेज पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि हर रात एक धुन गुनगुनाती है, हर फूल से महक आती है, हमारा ख्याल आपको आए या ना आए लेकिन हमें बस वो आपकी याद आती है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को पहुंचाने वाले दिलीप राम जी हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और हम भी शो से जुड़ गए हैं और मैं रोहित देहरादून से, और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और आपके यहाँ तो मेरे यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रही है। आज दिन अच्छा खासा बना हुआ था और धूप निकली थी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है लैला ने कहा मजनू से, फिल्म जंगल लव। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है और हो सके तो आपके गाने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते MD 97 दरभंगा भाजीपुर से, और मुझे एक गाना सुना दीजिए फिल्म आंदोलन का, गाने का बोल। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और बढ़ते हैं आगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं हम गाने के साथ और पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे सभी फील्ड से मैसेज किए हुए हैं कमलेश जी और गाने के फरमाइश करते हैं कमाल के, लैला ने कहा मजनू से। तो क्या कहा, चलिए सुना जाए। रेडियो MGM 90.4 FM पे

कमाल के सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें आप तो पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें, या ऐसे ही 90s के गाने की फरमाइश करें तो ही आपकी फरमाइश पूरी हो पाएगी। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू सर नमस्कार, क्या हाल चाल है। मनीष राजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है के पांडे सरिया गोपालगंज से, और सोनू भाई क्या हाल चाल है, कल मेरा सॉन्ग नहीं बजा तो बिल्कुल आज बज जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, फिलहाल स्वागत है आपका के पांडे जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, कमाल के सॉन्ग। रोशनी कुमारी मानिकपुर से जुड़ी है, स्वागत है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना का नाम है बहिया के हार ना भूला पैबू, गायक का नाम राधे श्याम रसिया, मेरा नाम है हजरत अली अंसारी घर रामपुर टिंगराही से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, भैया मुझे सॉन्ग सुनना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया मैंने में दीपक एंड जेलर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, ये गाने तो कल ही आपको हम सुनाए तो आज दूसरे को मौका दें, आपकी बारी समाप्त हो गई है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गाना बजाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सर जी, आपको भी धन्यवाद है कमलेश जी रेडियो रेमसम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय सुनो भैया जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड इवनिंग, कल मैसेज किया लेकिन मेरा गाना नहीं चलाए, तो कोई बात नहीं आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर जाएंगे, और क्या ही करें हमारे पास जितना समय मिला है उतना ही में ना कुछ करेंगे, तो आज कोशिश रहेगा जो कल के छूटे हुए मैसेज गाने के फरमाइश पूरी नहीं कर पाए हैं वो आज पूरी कर दें हम, यदि आप लोगों का मैसेज पहुंचता है तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू, आप ठीक हैं, तो बिल्कुल बढ़िया हैं, हमें क्या हुआ है, हम तो हमेशा मस्त स्वस्थ रहते हैं। और फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम तो नहीं लिखे हुए हैं, और शाहजहाँ खातून, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हैं हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और अगले गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, यहाँ पे गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागढ़ हैं जिनका नाम है MD 97 दरभंगा बाजितपुर से जुड़े हुए हैं, और गाने की फरमाइश भी कमाल के किए हुए आंदोलन से, और इन्हीं की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 94.4 FM पे शो चल रहा है। इसमें फरमाइश का और समय हो रहे हैं 9:46 और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल करेंगे। उससे पहले आप सभी के बीच फिर से हम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत छोटा सा एक सुझाव साझा करेंगे। और आप सभी जानते हैं ये कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश तो हो रही है सभी तरफ, तो हम आज जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू का परिचय हम बता दें, डेंगू एक वायरल रोग है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय काटता है और साफ रुके हुए पानी में पनपता है। इनके लक्षण हैं अचानक तेज बुखार 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री और तेज सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द और शरीर मांसपेशियां और जोड़ों में तेज दर्द और अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस करना, त्वचा पर लाल चटके चटके दाने निकलना और मियाज मतली जैसा रहना, उल्टी होना, प्लेटलेट्स की संख्या में कम होना, ये सारे इनके लक्षण हैं। और इन लक्षणों में आप सभी को किसी भी व्यक्ति को दिखाई देते समझना चाहिए कि डेंगू का लक्षण हमारे शरीर में आ चुके हैं। इनका उपचार है, डेंगू को कोई विशेष एंटीवायरस इलाज नहीं है। उपचार का उद्देश्य लक्षणों को नियंत्रित करना है, शरीर में पानी की कमी से बचाना है, अपर्याप्त आराम करें और अधिक मात्रा में पानी, ORS, नारियल पानी, सूप और अन्य तरल पदार्थ ले। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले और एस्पिरिन, आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द निवारक दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि ये रक्त स्राव का खतरा बढ़ा सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से इन दवाओं का उपयोग नहीं करना है, सेवन नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर प्लेटलेट्स और अन्य आवश्यक जांच कराएं। यदि तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून, बेहोशी जैसे लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। ये सारे लक्षण हैं और उपचार हैं। बचाव, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, मच्छरदानी पूरी तरह लगाए और पूरी बाह के कपड़े और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें, पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें, घर और आसपास नियमित साफ सफाई रखें। ये सारे डेंगू के लक्षण और बचाव और उपचार हैं। आप सभी से हर रोज ऐसी छोटी छोटी जानकारी सेहत सही लाभ के अंतर्गत रेडियो रामझिम के माध्यम से हर कार्यक्रम में दी जाएगी और आप सब इसका उपयोग कर सकते हैं और करेंगे, हमें उम्मीद है। तो आगे हम बढ़ेंगे और कार्यक्रम की ओर देखेंगे, कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए तो उन मैसेज को भी शामिल करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि AK पांडे जी, और AK पांडे जी आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुँची है रिपीट मैसेज किए हुए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि उजर बबूला बिना प्योरो ना शुभे, सुरेश सा तिरबिरवा से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर,

आपका और मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए MD97 दरभंगा भाजीतपुर से बस यूँ ही सुनाते रहिए। बिल्कुल आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल सुनाते रहेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, भैया मेरा सॉन्ग क्या हुआ, तो सॉन्ग आपकी तो नहीं बजेगी क्योंकि कल ही आपकी सॉन्ग बजी है, शायद आप सुन नहीं पाए। कल आप दो दो नंबरों से मैसेज किए हुए थे और हमने आपके गाने को सुनाया और हम सभी ने सुना, शायद आप ना सुन पाए लेकिन हम सभी तो सुन चुके हैं। सो आपकी बारी समाप्त हो गई है, तो थोड़ा सा सब्र करें। अब आगे जो भी श्रोतागढ़ जुड़े हुए हैं, जो कल के बाकी रह गए हैं, उनकी फरमाइश भी तो सुन लेने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कल के बचे हुए हैं के पांडे जी और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो इन्हीं के गाने को प्ले करते हैं और गाने का बोल देते हैं कल के और गाने का बोल देते हैं तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। चलिए सुना जाए आपके पसंद के गाने, हम सभी सुनते हैं। 90.4 FM पे।

प्रोग्राम जीएम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और ए के पांडे जी की फरमाइश, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल ये आबाद रहा। और आगे मैसेज करते हैं लिखे हुए कि ए के पांडे सरिया गोपालगंज से, सुनो भाई क्या हाल चाल है, कल वाला सॉन्ग सुना दिया आप मेरे साथ ना। अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मधु सरिया से राजू कुमार यादव सॉन्ग काबुल। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, आपसे भी पहले कई मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो उनके भी मैसेज तो हमें देखना है। और आगे बढ़ते हैं, आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। कृष्ण मोहन सिंह जी सिपाया खास से किए हुए हैं और इनके तरफ से गाने के फरमाइश है, तो चलिए इनके गाने को पूरा करते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।

0: दिल के टुकड़े
1: कभी प्यारा शाम रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मिसेस किए हुए हैं और इस मिसेस को पहुँचाते हैं मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और गाने का बोल देते हैं थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी यही गाना सुनना है सुना दीजिए। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा।
3: रेडियो 94 FM सुनने आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का काफ़ी प्यारा शम सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, नाइस गाना निशा पांड जुड़ी है, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, आग सूरज में होती है पर जलना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहों से होती है पर तड़पना दिल को पड़ता है। सुनो भैया नमस्कार, जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिलीप राम जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइशम, ओहो तो उसको पूरा करिए नाइशम। मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू गाना बजाने के लिए भैया, आपको धन्यवाद है। और इस मैसेज को करते हैं कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से, अपने गाने को प्रांत मैसेज किए हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे है, रामपुर टिंगराही से पहुंचा है राधे श्याम रसिया जी की आवाज़ में, और गाने का बोल बहिया के हारना पैबू। तो प्ले करते हैं, हम तो गाने सुने नहीं हैं, यदि अच्छे होंगे तो आगे जारी रहेगा, नहीं तो 20 में रुकने का प्रयास करेंगे।
4: क्यों क्यों तोड़ दिया मेरा दिल, क्यों किया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, हमें नहीं मालूम था कि तुम हमारी जान की दुश्मन बन जाओगी। देखो हम तुम्हारे बिना ऐसे तड़पते हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, एक ही पल में इतना बदल गए, सारी कस्में वादे सब भूल गए तुम। तुम इतनी बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब हम न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, हम क्या करें गजल क्या करें, हम प्यार में धोखा खा बैठे, ये चैन करार गंवा बैठे, अपने ही हाथों से हम खुद इस दिल में आग लगा बैठे, हम कांटों पर करवट बदलें वो प्यार की सेज सजा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे, धोखा खा बैठे।

0: मिल ही जाएगा।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आजय सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:04 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 72776665696 पे और जुड़ जाइए अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी आज के शो की आगाज करते हैं और आप सभी बताइए कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं, ऐप कैसा चल रहा है ज़रूर बताइए और गाना कैसा लगा ये भी बताइएगा और इंजॉय करिए। जब तक आपकी मैसेज आती है तब तक इस प्यारे से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: वेलकम बैक रेडियो टुमसुम 90.4 एफएम पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:10 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँच गए, इंस्टाग्राम पे भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और चलिए यहाँ हम अपना रुख करेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैसेज ज़रूर शामिल करिएगा, आप लोग मैसेज शामिल नहीं करते हैं। और लिखते हैं कि नमस्ते नमस्कार सोनी मैडम जी, हम राम कुमार MP बालाघाट स्लो क्राइस मिल से जुड़ गए हैं और मुझे और लिखते हैं कि आप मेरा गाना कब से नहीं बजा रही हैं और मेरे बंजारे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश जो है हम कल ही प्ले किए थे, कब आएगा मेरे बंजारे, और शायद आप सुने भी थे गाना। और ये आप नहीं बोल सकते हैं कि गाना और हम ही प्ले किए थे कल ही आपका गाना, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम कैसी हैं, जय माता दी। और मैसेज करने वाले हैं शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से, लिख रहे हैं सभी को बोल दीजिएगा गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बोल दिए हैं, और सॉन्ग सुनना है सुनवा दीजिएगा, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। और लिख रहे हैं कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती और इस गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमजम को, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मुस्तफ़ा जी जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, और मैं अनिश यादव विलेज दुमरा यदवंशी टोला से, और मैं भी जुड़ गया हूँ फिलहाल पटना में नीट की तैयारी कर रहे हैं। और लिख रहे हैं कि स्पेशल शायरी सोनी मैम आपके लिए, और लिख रहे हैं कि रिमझिम सी बरसात में जैसे ठंडी हवा की पैगाम होती है, वैसे ही आपकी प्यारी आवाज़ से हर दिल को आराम होता है। मुस्कान आपकी फूलों सी और बातें मीठी शाम है, हर श्रोता के दिल में बसी हुई हमारी प्यारी सोनी मैम का नाम है हो। और आप बोलती हैं तो महफिल सज जाती है, आप हंसती है तो हर खुशी मुस्कुराती है, रेडियो रिमझिम की पहचान और हर दिल की शाम है, सच कहें तो आप ही हम सब की प्यारी सोनी मैम है। और मुझे सॉन्ग सुनना है बिल्कुल आपकी फरमाइश है, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है। और इतना प्यारा मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि ये सॉन्ग डेडिकेट है सभी प्यारे श्रोताओं को, और इनके कुछ दोस्त हैं मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, रौनक यादव, अंकिता यादव, अंजलि यादव, नंदिनी यादव, मिष्टी यादव, मिल्की यादव और पूजा राजपूत को, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, इंजॉय करिएगा। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगली मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून और मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। रितेश कुमार जुड़े हुए हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ करिश्मा कुमारी जुड़ चुके हैं शिल्पी राज की आवाज़ में, बर्बादी वाला गाना सुनना चाहती हैं, तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि राधे राधे जी, निशा भारती जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। इरशाद जी है धनाव से, गुड्डू गुप्ता जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ संजय यादव जी हैं दुबई से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि वाह वेरी नाइस ओपनिंग सॉन्ग, उनको भी मोहब्बत हो, और सोनी जी क्या बात है। और मैसेज साथ है मुकेश कुमार जी दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी कैसी हैं आप, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, फरमाइश के साथ है, बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आवाज़ अच्छी आ रही है धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं देवेंद्र कुमार जी, और ठीक है कि हेलो आरजे मुझे भी एक प्यारा सा नगमा सुना दीजिए प्लीज़, और बोल है अग्रे से आई हो बरेली से, और अमित कुमार की मतलब आवाज़ में है फिल्म दिल की बाजी से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिरोज से एक जुड़े हुए हैं भागलपुर बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज हैं, सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि आपकी आवाज हमारी कानों तक साफ सुथरा सुनाई दे रही है और ऐप भी ठीक ठाक चल रहा है, गाना भी ठीक ही है ओपनिंग गीत। और नमस्कार जी, हमारा भी आज लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीनानाथ यादव हैं कुवैत से, स्वागत करते हैं आपका। राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ सोना लाल कुमार जी है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरफरोज अली गोपालगंज से फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश प्ले करेंगे, यहाँ जो मेरे पास पहुँचा हुआ है और फरमाइश करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर से काश कोई लड़की हमें प्यार करती, और गाने की फरमाइश के साथ है शिव सागर दीवाना जी। तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM को, बाकी की मैसेज इस फरमाइश के बाद।
1: गाने के नए वीडियोस

104 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं शिवसागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से और यहाँ मैसेज पहुँच गया इनकी तरफ से, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए और साथ में गुनगुनाने के लिए, जय माता दी। और आगे यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि वाह सुंदर गाना और हमें राही प्यार से, राम राम सोनी जी केम छो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और मैसेज कहाँ थे रेडियो फैन पंकज जी। और यहाँ शमशेर जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दो दिन से मेरा गाना नहीं बज रहा है और दो दिन से आप नहीं आ रहे हैं, कैसे हैं मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं आ रही हूँ, कल भी आई थी लेकिन दोपहर के बाद। और मैसेज के साथ है मिशर कुमार जी मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सनी मैम, आप कैसी हैं? और मैं मनीर आलम दुबई से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सब बताइए कि आप कैसे हैं। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हर हर महादेव सोनी जी, और मेरा भी गाना है बजा दीजिएगा, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं कुरैसिया से मुन्ना ठाकुर जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ और भी कई सारे हैं, अनूप कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और मैसेज यहाँ और लिख रहे हैं कि दिल लगाया था तुमसे पर तुमने इसे तोड़ दिया, दिल लगाया था तुमसे मगर तुमने इसे तोड़ दिया, ए सोनी बीच राह में लाकर हमें छोड़ दिया, सोचा था उम्र निभाएंगे मोहब्बत तुम और पर तुमने तो वफा की रूख ही मोड़ दिया। और इस मैसेज के साथ हैं कौन भाई, और श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं, और नाम मैं से सोना लाल कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका संग्रामपुर से। और काफ़ी खूबसूरत शायरी के साथ लिख रहे हैं कि गाना सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहता हूँ, मिथिलेश जी है, सोना लाल जी है, श्याम सुंदर जी है, अखिलेश जी है, निर्गुण जी को, और बिल्कुल आप सभी के साथ इंजॉय करिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे जो हमारे पास पहुँचा हुआ है। और यहाँ पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से निकेश चौहान जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ शिल्पी राज की आवाज़ में बर्बादी वाला गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, फरमाइश करने वाली करिश्मा जी, तो इंजॉय करिए अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं कृष्णा जी की फरमाइश और यहाँ इनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंच चुका है तो चलिए सुनते हैं क्या कहती हैं ये।
1: थैंक यू दीदी की रिप्लाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा लग रहा है आप गुनगुना रहे हैं तो बहुत आप गुनगुनाइए सब गीत में अच्छा लग रहा है। बहुत ढेर दिन के बाद हम जुड़े हैं।
0: ये तो बात है कि काफी ढेर दिन के बाद आप शो में आई हैं तो इतने दिनों से कहाँ थी जरूर बताइएगा। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे और थोड़ा इंतजार करिए। हाँ मनीष रजाक जुड़ चुके हैं फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और फरमाइश की बात है तो आपकी भी फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे तो आज तो नहीं प्ले होगा। और यहाँ एक और मैसेज है सुबोध साहू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और बिल्कुल दो दिन से गाना नहीं बज रहा है तो आज पूरी कोशिश है कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। यहाँ सुनील कुमार जुड़ चुके हैं पश्चिमी चंपारण अरेराज बाबा की नगरी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यह अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है जलवा जलवा गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, नाम है इनका रितेश कुमार जी फ्रॉम सिवान से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड

मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: मिला ही नहीं
1: तो वेलकम बैक रेडियो रिम्स 90.4 एफएम पर आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है और अभी से मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि मैडम जी मेरा गाना तो मेरा गाना। बिल्कुल एक एक करके सबकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए आप सभी और सबकी फरमाइशें एक साथ तो पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ मैसेज है, सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं पश्चिमी चंपारण अरेराज बाबा के नगरी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, शाहुद्दीन अंसारी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एप्लीकेशन पर मेरे फ़ोन में हो और गाना बज गया। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, नमस्कार पप्पू ठाकुर जी हैं बगही बाजार कटिया गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, लिख रहे हैं कि एक सॉन्ग चला दीजिए मेरा भी। बिल्कुल फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी नाइस जलवा जलवा, और मेरा भी सॉन्ग चला दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आपकी भी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि फूल से हारे की किस्मत से, फूल से हारे की किस्मत से मिला करते हैं, मिलने वाले मुकद्दर से मिला करते हैं, सोनी जी इरशाद मास्टर और धनाव से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और हम मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं पहली बार रेडियो रिमझिम से जुड़ा हूं और सुन रहा हूं और यकीनन ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल काबिले तारीफ है, धन्यवाद। और मैसेज के साथ है, नाम मेंशन नहीं किया, आप नाम भी बताइए अपना कि कौन है कहाँ से। फिरोज शेख जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, थोड़ा वेट करिए, फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश लेंगे इंस्टाग्राम से। और यहाँ मेहताब सिद्दीकी की जुड़े हुए हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और लिख रहे हैं कि आप शो में नहीं रहती हैं तो मज़ा नहीं आता है, आप रहती हैं तो अलग ही आनंद रहता है। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। यहाँ आदर्श चौहान जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश प्ले करेंगे, मेहताब जी की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। तो चलिए प्ले कर दिया गाना, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

से गाना नहीं बज रहा है और मैम भारती मैम तो एसएमएस में शामिल नहीं करती थी, कोई नहीं, और आपके गाने की फरमाइश है तो आज बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले होगा। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं मेहताब जी की फरमाइश है दुबई से। और आगे यहाँ अगली फरमाइश जो है हमारे पास प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ और भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और मैसेज है यहाँ इरफान जी जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ उपेंद्र शर्मा जी हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। कृष्णा जी हैं लिख रहे हैं कि का हलवा बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ गणेश कुमार भी जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कई दिनों से मेरी फरमाइश नहीं चल रही है। अजय जी हैं अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज अपनी फरमाइश भेज दीजिए, आज पूरी कोशिश है कि हम आपकी फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्कार जी। और केतन जुड़े हुए नासिक महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि आपका नियमित श्रोता हूँ, कृपया आज मेरी फरमाइश पूरा कीजिए। और फिल्म साजन का खूबसूरत गीत है मेरा दिल भी कितना पागल है गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है आज प्ले करने की पूरी। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी फरमाइश कितने दिनों से पूरा नहीं किया जा रहा। और यहाँ देखें तो कल ही आपकी फरमाइश जो है प्ले हुआ है। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से शो में, बने रही है। हाँ दिलीप कुमार ठाकुर जुड़ चुके हैं मिर्जापुटवाल पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैम किसी से दिल से प्यार किया था, उसने भी खूब नचा किया था, और दिल की बात जुबा से कहा तो उसने कहा मैंने तो मजाक किया था। और इस मैसेज के साथ है निरंजन कुमार जी बतरदे से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम आज मेरा सॉन्ग शामिल करना और आपकी गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले की है मिस्टर कुमार जी। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है कहाँ से जानते हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए। जी कैसी हैं संध्या जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: लड़की बहुत अनजानी है, ये गाना सुना दे।
0: लड़की बहुत अनजानी है।
1: हाँ, खाना खा लिए?
0: अभी समय है दोपहर के खाना में, सुबह का तो हो गया है।
1: कितना दिन से कॉल लगा रहे हैं, कॉल ही काट दे रही।
0: कार्ड दे रही हूँ ये तो इल्ज़ाम लगा रही हैं फिर आप। मैं कॉल नहीं काटती हूँ, ऐसा होता है कि गाना चलता है उस बीच कॉल नहीं रिसीव करती हूँ। और गाना प्ले कर दिया आपका संध्या जी, एंजॉय करिए ठीक है।
1: थैंक यू मैम,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:51 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और यहाँ फरमाइशों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और यहाँ कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। संजय यादव जी हैं, लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम, और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, लड़की बड़ी अनजानी है। और रोहित जी है देहरादून से, लिख रहे हैं कि हाँ मेरा नंबर कब आएगा। एक और मैसेज है, और मैम आप गा रही हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैसेज के साथ है नाम है इनका निरंजन कुमार जी हैं बतरदे से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सितारों से भरी रातें पसंद है, दूर से सुनी उनकी बातें पसंद है, तारीफ के काबिल तो है उनकी जुल्फे, पर मुझे ज़्यादा उनकी आंखें पसंद है। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है मैम, हम सब साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। सी यू विश्वनाथ महतो जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, कमलेश कुमार है, राहुल कुमार है, राजू कुमार है, विश्वकर्मा कुमार है, नागेंद्र कुमार है, प्रमोद कुमार है, राजा बाबू है, संजय माझी जी हैं, बुलेट कुमार है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ये तो और भी अच्छी बात है, बारिश बाहर हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम में रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी। और यहाँ मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और हाँ विपुल सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि टीचर देखो बेटा जुबान नहीं खोलते, और ये ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हारोगे। और बिगड़ैल स्टूडेंट, बस मैडम जी समझ गया, आगे से मैं एक दो दिन छोड़कर अच्छा खेला करूँगा। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं मेरा भी गाना है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी फरमाइश है और सबकी फरमाइश है, एक एक करके प्ले करेंगे। यहाँ कपिल जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। सुनील कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मंटू यादव जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रमोद प्रेमी की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की कोशिश है। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है अजय जी की तरफ से गाने की फरमाइश, और गोविंद ममता कुलकर्णी पर फरमाया गया ये गाना सुनना चाहते हैं। आंदोलन मूवी का गाना है, तो गाने का नाम भी बता दीजिए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जिन लोगों का दिमाग ख़राब रहता है वो लोग उदास ना हो, बल्कि उन लड़कियों से मिले जो कहती हैं कि एक चाटा मारूंगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। और मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी, तो ऐसी लड़कियां भी आप ही ढूंढ दीजिए। और एक यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि कितना सुंदर लिखा है किसी ने, प्यार प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीता तो मर जाता और ना पीता तो भी मर जाता, बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए, वक्त ने कहा काश थोड़ी और सब्र होती, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता, शिकायतें तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया है तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। और मैसेज के साथ है रेडियो फैन पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, कई सारे मैसेज अभी भी हैं। दिलीप राम जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जहूर आलम अंसारी जी है कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं क्या हाल है सोनी जी, हम भी जुड़ गए हैं। और बबलू दास जुड़े हुए हैं कटिहार बिहार से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे, हमारे पास गाने की फरमाइश है साजन तेरे प्यार में, अलका याग्निक की आवाज़ में, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं शरफरोज अली जी। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले हो चुका है।

0: और यहाँ आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। रेडियो फैन पंकज जी है, लिख रहे कि नाइस सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज है, और सऊदी अरब से सोनू कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले हैं सरफोज जी, और लिख रहे हैं कि धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। और सोनू जी लिख रहे हैं कि नमस्कार जी आप सभी को, और आज सभी गाने बहुत ही सुंदर हैं, अच्छे अच्छे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाने की फरमाइश करने के लिए। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से जानते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम से। मैं
1: बहुत बढ़िया बोल रहा हूं खजुरिया से
0: जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है
0: जी। आप जहाँ हैं थोड़ा साइड हो जाइए क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही आप।
1: आया बोली आ रहा है
0: जी। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे बताइए।
1: सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ जाना है ना।
0: और गाना डेडिकेट भी करिएगा
1: आज सुनने वाला सब लोगों को और दोस्तों को रात को।
0: चलिए प्ले कर दिए गाना आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

मंटू यादव जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है, आपका आज फर्स्ट दिन है, आप जो गाने की फरमाइश किए हैं प्रमोद प्रेमी की आवाज में, उस गाने की फरमाइश आप चेंज कर दीजिए। आपकी जो फरमाइश है हम नहीं प्ले कर पाएंगे, और आपका फर्स्ट दिन है इसलिए मैं ये बता रही हूँ, और चेंज कर दीजिएगा तो प्ले करेंगे, नहीं तो आपके गाने की फरमाइश हम प्ले करने वाले नहीं हैं।

0: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
13: वेलकम बैक रेडियो टूनसिम 90.4 FM पर आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, देखते देखते घंटा निकल चुका है, 1:08 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैं मुंबई जुड़ गया हूँ साउथ अफ्रीका से, सुन रहे हैं। और आप कैसी हैं? सोनू कुमार चौरासिया जी हैं रामपुर खरिया से, और लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, मेरा भी एक गाना है बजा दीजिए। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये कन्फर्म करिए कि आपको कौन सा गाना सुनना है, इंस्टाग्राम वाला या फिर व्हाट्सएप वाला, फिर हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे, आपको कहाँ का गाना सुनना है। और आगे यहाँ इंद्रदेव जी जुड़े हुए लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी, और गाना सुनना है हमें भी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ संदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, लिख रहे हैं कि देशभक्ति एक सॉन्ग सुना दीजिए, जितना लोग हैं सभी को सुनवाना चाहता हूं। तो देशभक्ति कोई भी गाना सुनना है या फिर कोई नाम है तो बता सकते हैं जो आपको सुनना हो, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहां मैसेज है लिख रहे हैं कि हमारा भी सॉन्ग है बजा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, एक एक करके हम सबके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और यहाँ लिख रहे हैं कि वाह मैम वाह, आप गुनगुनाइए जी, और ऐसे ही गुनगुनाइए, अच्छा लगता है। और मैसेज साथ है कपिल जी कोटा राजस्थान से, मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, और गाने की फरमाइश के साथ है अंजलि विश्वकर्मा जी जो कि राजस्थान से, कोटा राजस्थान से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल ये अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे जो गाने की फरमाइश करने वाले हैं रोहित जी देहरादून से, और गाना सुनना है जैसे भी तू, मांगेगा। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए गाने को रेडियो टीम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी नाचे नागिन गली गली से काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश और फरमाइश करने वाले हैं रोहित जी देहरादून से लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच सोनी जी गाना प्ले करने के लिए और गुनगुनाने के लिए शुक्रिया। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गाना बज रहा है, जैसे भी तुम आनेगा मना लूंगी सवरिया और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, मैं आजाद अंसारी सऊदी अरब से बिल्कुल हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ उमाशंकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए, मैं भी गाना सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि अभी जिसका मैसेज आपने पढ़ा था, अच्छा अंजलि जी मेरी वाइफ है मैम और उनको भी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका कपिल जी कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बिल्कुल उनकी भी फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना है जी, हाँ बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है और चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना है जी, हाँ बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है और चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, आपकी फरमाइश जो है नेक्स्ट रहेगी। फिलहाल यहाँ गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश करने वाले हैं प्लीज़ मैम बजा दीजिए दिलीप शर्मा जी पथरा टोला से, तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, आपकी फरमाइश को थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ जो अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं हमारे पास पहुँचा हुआ है अयोध्या से और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अजय जी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को खता तो जब होंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं अजय जी अयोध्या से और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया लेकिन गाना सुन लिए हैं तो चलिए बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं और अगली फरमाइश है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और गाने की फरमाइश करने वाले हैं नाम है इनका अनीश यादव जी दुमरा यदुवंशी टोला के रहने वाले हैं जो कि अभी पटना में नीट की तैयारी कर रहे हैं और वहीं से शो में जुड़े हुए हैं तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर गाने की फरमाइश आपका प्ले कर दिए हैं।

और यहाँ मैसेज पहुंच गया, लिख रहा है थैंक यू मैम इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए और उसके साथ गुनगुनाने के लिए, आपकी मधुर आवाज ने इस गीत को और भी खास बना दिया है, दिल से धन्यवाद, एंजॉय करिए गाने को।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: वेलकम बैक, रेडियो रंजीम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है। गोविंद कुमार जुड़े हुए, लिख रहे हैं, नमस्ते सोनी जी, गाना सुनना चाहता हूँ माँ तुझे सलाम फिल्म का, और गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, आपको गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे कॉल के माध्यम से। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी आपकी आवाज़ अलका याग्निक से मिलता जुलता हो गया है। और मैसेज के साथ है ईशा जी धनाव से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ उमा शंकर सिंह जी

0: फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मुकेश जी जुड़े हुए हैं यूपी 42 से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ कॉल रिसीव करते हैं और देखते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जी में।
1: सोनी जी।
0: जी सोनी जी ही बात कर रहे हैं।
1: मैं कृष्णा जी, वहाँ से।
0: जी क्या हाल चाल है?
1: नमस्कार, ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी नमस्कार, हम भी बढ़िया हैं। तो आज क्या सुनवा दे आपको?
1: रहे, बढ़िया रहे आप।
0: बिल्कुल, धन्यवाद।
1: तो ज्यादातर की ओके के हमारे तरफ से आशीर्वाद रहेगा।
0: जी तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: आज गाना सुनवा दीजिए तिरंगा फिल्म का। पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र का।
0: जी तो प्ले कर दिए गाना आपका।
1: ठीक है,
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए, एंजॉय करिए गाने को।
1: धन्यवाद
2: जानी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं कृष्णा प्रसाद जी की फरमाइश है और यहाँ दिनेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लिख रहे हैं कि पीले पीले ओ मेरे राजा, बहुत ही मस्त गाना बज रहा है सुनी जी और आपका आवाज कानों तक आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि मन करता है अब तुझे भूल जाने का, उन हसीन पलों को दिल से मिटाने का, जब तुझे मेरी याद आती ही नहीं तो क्या फ़ायदा तुझे दिल से लगाने का। सुनी जी आपके लिए है दिल से।

और ऐसा क्यों है ये जरूर बताइएगा। और फिलहाल अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे जो मेरे पास पहुंचा हुआ है। गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका फिरोज शेख जी, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। अगरे से आई हो या आई हो बरेली से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं।

90.4 रेडियो रंजन सर, आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, यानी कि फरमाइश करने वाले थे फिरोज शेख जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए दिल से। और आगे हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि धन्यवाद गाना फरमाइश करने वाले को, आपने हिला दिया, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज साथ हैं मनोज शर्मा जी कररिया से, लिख रहे हैं हम भी जुड़ गए हैं। सोनी मैम नमस्कार, और मेरा एक फरमाइश है, नहीं ये हो नहीं सकता, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ मैसेज है दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है जी। हाँ बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, और गोल्डन टेलर जुड़े हुए तीनफेड़िया से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बोल रहे हैं कि मेरा मैसेज अभी तक शामिल नहीं हुआ, तो भाई जब भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं एक बार मैसेज पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर वॉइस टाइपिंग कर रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए कि आप जो बोले हैं वही टाइप हुआ है कि नहीं, गलत मैसेज आ रहे हैं तो फिर पढ़ने में भी परेशानी होती है। और आप लोग बोलते हैं कि मैसेज शामिल नहीं हो रहा है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि मैडम से गाना सुनवा दीजिए। और लिखते हैं कि हवाओं में बहती हुई एक हसीन शाम लिखूँ, हवाओं में बहती हुई एक हसीन शाम लिखूँ, या रेडियो रंजन से आती सुहानी तान लिखूं, जब पन्नों पर उतरती है गानों की ये मिठास, दिल को जोर दे वो मैं खूबसूरत नाम लिखूं, और रिमझिम की हर धुन में जिंदगी मुस्कुराती है। सुना दीजिए मैडम जी गाना, और बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और फरमाइश करने वाले हैं दिलीप शर्मा जी पथरा टोला से, थोड़ा सा और इंतज़ार। और यहाँ अगली फरमाइश जो है हम प्ले करने वाले हैं, हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, भोजपुरी गाने की फरमाइश है पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं निकेश चौहान जी। तो इंजॉय करिए अपने गाने को शिल्पी राज और विवेक राज विक्की राय की आवाज़ में, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 8570-32042 पे।
11: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
11: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे और आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो कई सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। और यहाँ मैसेज है, मिस्टर कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से, लिख रहे हैं कि ऐसे ही भोजपुरी गाना बजाते रहिए। तो ये इसमें सब मिलजुल के गाने आते हैं, जैसे गाने आएंगे वैसे ही प्ले होंगे। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और हम प्रोग्राम सुनकर मैसेज कर दिया। मैडम जी हमारा भी हाजिर लगा दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। गुरु नानकपुरा बठीटा पंजाब से जुड़े हुए हैं किशोर सबलनिया जी, सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया बेटी अंशु रानी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी रेडियो रिमझिम को मोबाइल पर नहीं बल्कि रेडियो पर सुनता हूँ और हमें कहीं जाना है तो मैं कार्यक्रम को सुन नहीं पाता हूँ और मेरा गाना है, प्ले कर दीजिए, मेहरबानी होगी। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल बनी रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और हाँ और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि बोलबम भोले बाबा वेलकम, भोले बाबा पत्थर में पार्वती की जी के चक्कर में हमारी मांगे पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो, हमारा नेता कैसा हो भोलेनाथ जैसा हो, जो बाबा को भूलेगा वो हरदम राह झूलेगा। और मैसेज के साथ है सुन्यासी रंजन बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम बहुत पुरानी लिस्नर हूँ मैं और टाइम टू टाइम आप टाइम टू टाइम जुड़ते रहती है। और मैसेज के साथ जुड़ी हुई नाम है इनका, शाहजहाँ जी विलेज मुगल विरेचा से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, मुकेंद्र कुमार कुशवाहा हैं जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं शो में, तो चलिए आपकी फरमाइश से प्ले कर रहे हैं, वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से काफी दिनों के बाद जुड़ा हूँ, मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिए भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, ये सॉन्ग सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ, सुना दीजिए।
0: बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले हो चुका है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर, एंजॉय करिए अपने गाने को।

और रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जी की फरमाइश है दुबई से और लिख रहे हैं थैंक यू गाने की फरमाइश के साथ और जी हाँ बिल्कुल भुला नहीं सकोगे और अगली फरमाइश है नहीं ये हो नहीं सकता कि याद ना आए तो चलिए गाने की फरमाइश जो है नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए और गाने की फरमाइश के साथ है मनोज शर्मा जी कररिया से एंजॉय करिए गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर

90.4 रेडियो रिमझिम से आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और हम मैसेज लिख रहे हैं कि बेहतरीन सॉन्ग तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। और मैसेज के साथ है फिरोज शेख जी भागलपुर बिहार से और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि वह क्या सेटिंग किया है सोनी मैम जी। और मैसेज के साथ है मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जी और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, नहीं ये हो नहीं सकता। और मैसेज के साथ है सोनू कुमार चौरसिया जी साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गाने की फरमाइश एंजॉय करिए मनोज कुमार शर्मा जी की जो कि हैं कररिया से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
13: वेलकम बैक रेडियो रूम 90.4 FM पे आप सभी के अपने कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस में। और 2:04 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है और कई सारी फरमाइशें भी हमारे पास पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं कि मोहब्बत का कोई कसूर नहीं, उसे तो मुझसे रूठना ही था। मोहब्बत का कोई कसूर नहीं, उसे तो मुझसे रूठना ही था। दिल मेरा शीशे सा साफ और शीशे का अंजाम तो टूटना ही था। और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज आप बहुत गुनगुनाई है, लंच कर लीजिए, भूख तो लग गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, भूख तो लग ही गया है और खाने का समय तो हो ही चुका है। और इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मस्त गाना है मैम। और मैसेज के साथ है कोटा राजस्थान से कपिल जी। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार। और नंद कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मनोज शर्मा जी हैं, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सुबोध साहू जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और बेगूसराय से गाने की फरमाइश से, तो आपकी फरमाइश जो है हम मंगलवार को प्ले किए थे और अगली फरमाइश 1 सप्ताह बाद ही पूरा होगी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सॉन्ग राखी हर साल आवेला सावन के दिनवा में। और दिनेश कुमार गुप्ता जुड़े हुए हैं मुकुंदपुर पोस्ट सलेमगढ़ जिला कुशनगर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है और बस ऐसे ही कुछ भी क्लिक करके भेज दिया गया, तो नाम अच्छे से लिख के भेजिए अगर जुड़ना है तो। और कुछ भी ऐसे मैसेज नहीं किया करिए आप लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में, लेकिन अच्छे से मैसेज किया करिए जब भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश कल्पना जी की आवाज़ में, कुछ दिन रहिए बलम जी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका दिलीप शर्मा जी, जो कि जुड़े हुए हैं अबू धाबी से। तो आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं।

और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना बजाने के लिए। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा गाना है। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, मिथिलेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संग।

104 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे गाने की फरमाइश करने वाले हैं दिलीप शर्मा जी अबू धाबी से और यहाँ इंस्टा पे मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून वन सेकेंड टुडे सम सॉन्ग इज रियली माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग एंड मास्टरपीस स्पेशल थैंक्स फॉर नहीं ये हो नहीं सकता तेरी याद ना है सोनू जी हैं सऊदी अरब से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है उससे पहले यहाँ और भी कई सारे मैसेज लिख रहे हैं कि घर छुट्टी लेके और ही कुछ दिन रही है बलम जी बहुत ही मज़ा आया गाना सुन के और मैसेज के साथ है नाम है इनका फिरोज शेख जी जो कि भागलपुर बिहार से हैं और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मंगलवार को फरमाइश नहीं बजा है ठीक से चेक किया जाए और ओके मैं चेक करती हूँ और चेक करके बताऊंगी कि आपका मंगलवार को फरमाइश प्ले हुआ है कि नहीं और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि घर छुट्टी लेके और ही कुछ दिन रही है बलम जी कल्पना जी का गाना और बजा के गांव याद दिला दिए मैम धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और मैडम जी हमको भूल गए हैं क्या बिल्कुल नहीं किसी को हम नहीं भूले हैं और मैसेज के साथ है नाम है इनका श्याम सुंदर जी और मिथिलेश जी है सोनालाल जी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बिल्कुल आपको नहीं भूले हैं आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार की तरफ और जो गाने की फरमाइश है कोटा राजस्थान से गाने की फरमाइश करने वाली है नाम है इनका अंजलि विश्वकर्मा जी तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर कसमे वादे प्यार वफा

0: जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
6: In this era of volatility and disruption,
7: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
8: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार

0: गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788891 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक भोजपुरी में प्यारा सा सॉन्ग हंस के बोल्ला का। चलिए इसी गाने के साथ शो को शुरू करते हैं।

तो इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं अच्छा गाना है और बहुत अच्छा गाना है मैडम जी। तो आप सभी अपना नाम भी लिखा करें ताकि मुझे पता चले कौन है आप। और यहाँ लिखे हैं हाय प्रदीप सानी दिल्ली से, आप गाना नहीं सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं सभी के गाने सुनाती हूँ और जिसका जब नंबर आएगा तभी ना सुनाऊँगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पंकज जी की तरफ से भी मैसेज पहुँच गया, वेलकम बा भारती मैम, का हाल बा? तो हाल तो ठीक बवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है निकेश जी की तरफ से जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, और बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और इनकी तरफ से लिंक के माध्यम से खेसारी लाल की आवाज़ में गाना पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरे मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए, मैडम जी हमको भूल गए हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। और अभी आप ही का सॉन्ग प्ले करने जा रही हूं, और एंजॉय कीजिए अपने गाने को सभी के साथ।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए

0: अनबुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782291 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं, नमस्कार मैम, रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हैं। तो ज़रूर रिसीव करेंगे, करिए कॉल। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरा भी एक शायरी है निकेश जी की तरफ से और लिख रहे हैं, दिल लगाया था तुमसे पर तुमने इसे तोड़ दिया। एक सोनी ऐ सोनी बीच राह में लाकर छोड़ दिया, सोचा था ताउम्र निभाएंगे मोहब्बत तुमसे पर तुमने तो वफा कर रुख ही मोड़ दिया। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकिशोर जी देवघर झारखंड से, लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है ये शाम मस्तानी मूवी कांति पतंगा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है और मैसेज पहुंचा हुआ है मुकेश जी जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और गाना है बैठा नीले झील किनारे चांद को अक्सर पुकारे, सॉन्ग मूवी है कुर्बान। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

यहाँ थैंक्स लिख रहे हैं, थैंक मैडम गाना सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, और हमारे नदी में पानी आ गया है, और आप बताइए।

0: मैसेज की तरफ और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: हेलो
1: जी, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, आपका भी स्वागत है। बोल रहे हैं मैडम, एक थोड़ा मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: दिलवाले मूवी सॉन्ग का, जीता था जिसके लिए।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है
1: जी?
0: किसी को सॉन्ग डेडिकेट है?
1: नहीं, अपने सुनना है।
0: अच्छा जी, चलिए फिर गाना आपका प्ले कर दिए हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले।

0: लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिलीप कुमार ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, भी लिख रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिए भारती मैम, और पंकज भैया को प्रणाम बोल दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको, और पंकज भैया को भी आपकी तरफ से प्रणाम बोल दिए। और यहाँ नया टेलर शिवराजपुर से भोजपुरी गाना सुनना है, सुना दीजिए सोनी मैडम, तीन थान गहना फ्री बा। अच्छा, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दूर होकर भी कितने करीब होते हैं, हम याद करते हैं आपको हर पल सोनी जी, क्योंकि आप जैसी लोग किस्मत से नसीब होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, सॉन्ग राखी हर साल आवेला सावन में, दिनेश जी के, दिनेश कुमार गुप्ता मुकंदरपुर पोस्ट सलेमगढ़ के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए आपका भी गाना प्ले कर देते हैं, और गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना दिनेश कुमार गुप्ता जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग राखी का, और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है पंकज जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं बहुत सुंदर राखी सॉन्ग बिहारी बाबू से। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सलमान अली जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और साउथ बनकटी बैकुंठपुर गोपालगंज बिहार से हैं और लिख रहे हैं मुझे भी एक गाना सुनना है, और सॉन्ग है शिल्पी राज की आवाज़ में बर्बादी सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी के प्ले करते हैं सॉन्ग को और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है

न्यान टेलर सॉन्ग सुनना है इनको, और सॉन्ग है तीन थान। तीन थान गहना, और लिख रहे हैं मेरा गाना नहीं बजेगा क्या। तो जी बिल्कुल, आप ही का गाना प्ले करने जा रहे हैं, और एंजॉय कीजिए सभी के साथ इस गाने को।

अभी हम लोगों ने नैन टेलर जी के साथ सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग खेसारी लाल जी की आवाज में, तीन थान गहना। तो इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राधे राधे दी नमस्ते निशा भारती, रजौन बाजार से जुड़ा है, गाना सुनना है चाहते हैं हम हैं फूल बम का खेसारी लाल जी की आवाज में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है दिलीप जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं बजा दीजिए भारती मैम, बहुत दिन बाद भेजा हूँ फरमाइश। तो जी बिल्कुल, चलिए अभी आपका फरमाइश प्ले करते हैं। और इनकी फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है हमारे पास और गाने के बोल हैं प्रेम चिन्हे लाना। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, चलिए सुनते हैं सभी के साथ और इंजॉय करते हैं इस गाने को।

और यहाँ मंटू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है मनोज तिवारी जी की आवाज़ में। हम बानी परदेश में घर में रोवत हुई हैं जा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।

खेसरिया से प्रेम बा, सासाराम से भोला चाचा के, पिंटू भाई के, मोती भाई के, सिंटू भैया, उमेश भैया, गोलू जी बनारस, केके जी वहाँ सबसे प्यार बा, मोहब्बत बा। अच्छा यहाँ के मंटू जी पटना से, विकास जी उहों के प्यार में कितना पागल बनी, देखी प्यार के कैले रहे।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, भारती जी प्लीज़, मेरा नाम केतन है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे भोजपुरी गाने सुनना बहुत पसंद है, कृपया मुझे गाना सुना दीजिए, पीवा से पहले हमार रहलो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैं हेलो मैम, नाम आकाश यादव, हमारा डिस्ट्रिक्ट रोहतास है, और हमारा रिक्वेस्ट है ये सॉन्ग बजा दीजिएगा, आकाश चौहान का सॉन्ग। तो के पटेनी बीजापुर बोल के। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं मंटू यादव। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मनोज तिवारी जी की आवाज़ में, हम गाना सुनना है, हम बानी परदेश में घरे घर में रोवत हुई हैं जान। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। मनोज तिवारी का मंटू जी के साथ, और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय गुड इवनिंग मैम, हम टुनटुन यादव विलेज पठानपट्टी पोस्ट पठरा जिला गोपालगंज बिहार से बानी, हमके गाना सुने के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हाय हेलो नमस्कार, हेलो मैं खेसारी लाल यादव का गाना सुन खेसारी लाल की यादव का गाना सुनना है, नया वाला राजा वाली राजा, और सुनील यादव जी हैं। हाँ मैम हमारा गाना नहीं बजेगा तो? जी बिल्कुल आपका गाना बजेगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज आया है जो लिख रहे हैं, हाय मैम नमस्कार, माय अर्ली लिसनर, आई एम सॉरी यू आर गोइंग टू सेंड मैसेज। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वैसे आपका नाम क्या है, नाम ज़रूर मेंशन करें। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि इनका गाना मंगलवार को शायद बजाने का दिन है, तो आपका गाना मंगलवार को ही बजेगा, मैं आज नहीं बजा सकती। और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है यहाँ जो कि लिख रहे हैं, राधे राधे दी, नमस्ते निशा भारती राजौन बाजार से जुड़े हैं, गाना सुनना चाहते हैं।

बोलबम का खेसारी लाल जी की आवाज़ में, तो बिल्कुल मेरा भी गाना बजा दीजिए, मेरा मैसेज का टाइमिंग देख लीजिए, मैं तब तेरे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ धनेश्वर कुशवाहा शिवराजपुर से भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, और भारती जी पतली कमरिया जिंदगी भर रही ए राजा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैडम जी नमस्कार, हम भी आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम में आज हमको भी एक गीत सुनना है, फरमाइश कर दिए हैं, तो गाने के बोल हैं ये पर्दा हटा दो मुखड़ा दिखा दो। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डेडिकेट है अवंतिका अर्चित सिंह, और ये रहने वाले हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो चलिए पढ़ते हैं बिना देरी किए आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो नमस्कार, मैं राजू लकड़ी दरगाह से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मुझे भी गाना सुनना है, और लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता या सॉन्ग सुना है सुना दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ अमरजीत शुक्ला ओझौलिया से जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, क्या हाल है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल बहुत ही अच्छा है, और यहाँ हमारे साथ आरिफ अंसारी गोपालगंज से जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, मेरा भी गाना लगा दीजिए मैम प्लीज़, बहुत दिन से मैसेज कर रहा हूँ। तो जी आपका भी गाना बजेगा, रखिए तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं हाय, और मैसेज करने वाले हैं संदीप कुमार हैदराबाद से, देशभक्ति गाना सुनना है, सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ये सॉन्ग लिंक के माध्यम से हमारे पास पहुंचा हुआ है, बॉर्डर मूवी का सॉन्ग है मेरा दुश्मन मेरा भाई। तो और ये लिख रहे हैं मुझे दिल्ली के सभी को, मुझे दिल्ली में सभी को सुनाना है। तो जी बिल्कुल, तो चलिए मैं आपके गाने को प्ले करती हूँ और इन्जॉय कीजिए सभी के साथ इस गाने को।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, क्या हाल है आपकी आपकी आपके साथ जुड़ा हूँ दिलीप राम दिल्ली वाले। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, एंजॉय कीजिए गाने को सभी।

और हम अभी हम लोगों ने सुना संदीप जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बॉर्डर मूवी का मेरे दुश्मन मेरे भाई। और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है

जत लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार रेडियो रिमझिम दोस्तों के लिए, हम भी जुड़ गए हैं सुनील कुशवाहा मैहर एमपी से। सोनी मैम, मैसेज बहुत लेट शामिल करती हो आप, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेट मैसेज शामिल नहीं करते हैं, सभी के मैसेजेस पढ़ने होते हैं यहाँ। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार सोनी मैम, सलाम, वेलकम, हमारा टाइम फरमाइश करने का कब है बता दीजिए, हम भूल गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ये आपको सोनी जी ही बताएंगी क्योंकि उन्हें ही पता है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो क्या हाल है अनूप कुमार विलेज निरंजन, अभी पुणे में हूँ, आवाज़ बढ़िया आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दीदी आपके इधर बारिश हो रहा है क्या बताइए ज़रूर। तो नहीं, हमारे यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रहा है। और लिख रहे हैं, अभी मेरे इधर तेज़ बारिश हो रहा है, आपके इधर मौसम कैसा है दी, आपके गुनगुनाने से बहुत अच्छा लगता है, हाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हमारा नाम आकाश कुमार, जिला रोहतास, जिला रोहतास देरी ऑन सोन बराती जी और भारती जी, और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आकाश चौहान जी का गाना है भोजपुरी में एक बार बजा दीजिए। गाना का बोल है कि तोहके पटैनी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना बजाऊंगी, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ एक और फरमाइश पहुँचा हुआ है, पहले उसे प्ले करूँगी। और हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, नमस्ते सोनी जी क्या हाल है, बबलू दास कटिहार बिहार से हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, हमें भी गाना सुनना है, गाने के बोल हैं छम्मा छम्मा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

और यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहजहां विलेज मुगल बरीचा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं, हेलो वेलकम भारती जी, आपका क्या हाल है? तो मेरा भी हाल ठीक है, एंजॉय कीजिए गाने का।

और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर से सुपर सॉन्ग भारती जी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू टू, ऑल सॉन्ग इज रियली गुड एंड नाइस मैम, कैन यू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन प्रोग्राम टाइम, सोनू सऊदी अरबिया से। तो ये योर वॉइस योर चॉइस का शो 12 बजे से 4 बजे तक चलता है और आप व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से हमसे या इंस्टा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग छम्मा छम्मा, और नमस्कार भारती जी मैं रोहित देहरादून से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अभी समय हो रहा है समाप्त करने का। एंड सम इन्फॉर्मेशन यू योर इंस्टाग्राम, आई थिंक यू इंस्टाग्राम इज़ नॉट वेल वर्किंग। नहीं, इंस्टाग्राम भी हमारा काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। और यहाँ एक और मैसेज जुड़ा हुआ है हमारे साथ जो कि लिख रहे हैं रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से, लिख रहे हैं दर्द ना हो तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिला जाता सब कुछ, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वालों की ज़रूरत ना होती। तो ये तो बात सही है, बहुत बहुत स्वागत है और जाने का भी टाइम हो गया है। तो चलिए बिना देरी किए आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा ले लूँगी, और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

हाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हवाओं में खुशबू घुलती है आपकी आवाज़, रेडियो रिमझिम में सजता है एक सजा साज, दिन हो या शाम आप लाते हैं चेहरे पर मुस्कान, आपकी इस मेहनत और प्यार पर पूरी इलाकों का है नाज, हर धड़कन तक सुरों का पैगाम पहुँचते हैं, उदासी भरे पलों में भी खुशियों के तराने सुनते हैं, रेडियो रिमझिम के एक हर एक कार्यकर्ता को दिल से सलाम जो दिन रात मेहनत करके हमारा हर पल खास बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरी, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 97-0-97-06-575।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
11: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट।

0: डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: मैं काजल राघवानी, पटना से पाकिस्तान के फुल वीडियोस आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स चैनल पर।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर, पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
9: बोलबम, हर हर महादेव।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
6: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 99-393-65923।
7: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
8: हेलो।
9: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: जी मैं विकास जी बोल रहा हूँ, चिंतापुर से।
8: कैसे हैं आप?
9: जी नमस्ते मैम।
8: नमस्ते,
9: क्या हाल चाल है मैम?
8: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
9: बहुत बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैडम?
8: हम भी तो ठीक ही हैं।
9: अच्छा, आज आपका कॉल लगाते लगाते मैं कितना 10-15-20 वाली लगाए आपका कॉल।
8: अच्छा,
9: सोचे की पौने बारह हो गया, लगाता हूँ और काम धाम हो रहा है। अभी 1 घंटे के बाद लेन चेंज होगा।
8: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आज?
9: अच्छा वो वाला गाना बजा दीजिएगा, दिल न लबई हा फिर जाने आई हा, ये भी बजा सकते
8: हैं। ओके,
9: ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, तो जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको। ठीक है मैडम, और सब बढ़िया है ना मैडम?
8: हाँ हाँ, मेरा बढ़िया है।
9: ठीक है,
8: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
9: ठीक है, नमस्ते मैडम।
8: नमस्ते।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, झारखंड से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: भारती मैम बोल रहे हैं ना? जी जी, आज सुना दीजिए पुरानी फिल्म है मैम घर परिवार, गीत के बोल रहे हैं। बड़ा बलवान समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान, गीत के बोल रहे हैं सर।
0: ओके,
1: जी सबसे पहले मैम आपको और रेडियो के जितने लिसनर हैं सबको, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उन सबको भी, विष्णु प्रसाद यादव, मदन कौल, शशिधर प्रसाद यादव, कृष्ण कौल, राजकुमारी, प्रभु कौल, भोलानाथ कौल, संजय कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
9: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
13: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
17: जब फोन डिंडे बजते हैं तो कहते हैं
18: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494911। जी हाँ, 80029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो हेलो मैडम, नमस्कार।
20: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
19: ओके, तो आज हमको मैडम फोन करना, आप आवाज आपका कुछ अलग सा लग रहा है जी।
20: मेरा आवाज
19: भारती जी है या सोनी जी है?
20: हम तो भारती ही बोल रहे हैं अभी।
19: अब आवाज हमको सही आने लगा है ना। पहले हम कंफ्यूज हो गए, बहुत पतला सा आवाज आया पहले।
20: अच्छा,
19: इसीलिए कंफ्यूज हो गए हम। तो आज गाना सुना दीजिए, एक दुनिया है मैं फिर मैंने काम की नहीं।
20: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
19: अरे पहले बाबा तो अब आपको क्या कहे, बार बार आप कहना पड़ता है आपको। पहले आपको आज पहले सोनी जी को।
20: अच्छा जी, चलिए।
19: और एक है वो कौन, क्या नाम है, उन भूल जा रहे हैं।
20: सोनू।
19: और सोनी जी को उनका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है। उनका भी प्रोग्राम मैं सुनता हूँ, प्रोग्राम दे रहे हैं वो। हाँ, सोनू जी का। और उसमें जो है वो रेडियो रिमझिम का जो मेन आती है, उसके साथ जो बातचीत होती है, लोगों का सब बातें आता है तो कवर करते हैं, उसके अनुसार जो होता है जवाब देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ये प्रोग्राम है रेडियो रिमझिम, झंडा लहरा दिया है, पूरा झंडा लहराया हुआ है। सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं, और हमको जो है ना भारती जी को एक ही प्रोग्राम सुनना बाकी है, वो एक बजे वाला प्रोग्राम आता है ना।
20: कौन सा?
19: और सोनी जी रहती है उससे ज्यादा,
20: भोजपुरी एक्सप्रेस।
19: हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस में।
20: अच्छा,
19: उसमें आप आ जाती तो चार चांद लग जाता। चलिए तो मैडम, तब हमको अब एक गाना सुनवा दीजिएगा। आइए, जो बातें हो जिसको काट दीजिएगा। हाँ, सुनवा दीजिएगा गाना, ये दुनिया में फिर मेरे काम से।
20: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 एफएम।
19: ओके, थैंक यू।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 FM।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते,
1: कैसी है?
0: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: खाली फरमाइश मर गाना वाला
0: ना ना, अभी सब क्योंकि गाना पेंडिंग में बा, अभी शुक्रवार वाला गाना नहीं के बाजा।
1: हाँ तो बुधवार वाला नहीं के बाजल हमारे गाना।
0: अच्छा ना, बुधवार वाला बाज गई बाबे, कैसे सब कॉल बजा दिल बानी हम। जन शुक्रवार के जन बानो उहे बाजल बाबे।
1: अच्छा
0: हाँ
1: और बताइए, अच्छा बानी नो?
0: हाँ हाँ हम तो अच्छा बानी।
1: बारिश होता खूब?
0: रात भर बारिश होता और ये बरा से खुल जाता।
1: अच्छा ठंडी मौसम बा।
0: हाँ तो आज कौन सा गाना सुने बताए?
1: अब सुने के बाद नौका गायिका लोग के रोहित रोशन।
0: कौन सा गाना?
1: बाबा धाम का गाना।
0: कौन सा?
1: रोहित रोशन बाबा धाम का गाना नहीं कौन चला हुआ?
0: अच्छा
1: वही गाना।
0: अच्छा जी चलिए, और गाना क्या कुछ सुना हो के बाद?
1: आपको आज इतना रेडियो रेंजी मैजे है, सब दो सुनते हैं सबके साथ।
0: चलिए फिर गाना और प्ले करते नहीं, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रंजी 90.4।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमा जेड पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
9: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
11: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
12: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: मैम सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
13: रेशमा बोलते हैं कुफानपट्टी को।
1: अच्छा कैसन बानी?
13: ठीक बानी। आप
1: हमने ओके ठीक बानी सर।
13: तो ठीक बा।
1: हाँ
13: अब नाश्ता हो गए?
1: हाँ नाश्ता हो गए।
13: और
1: सब तो बस काम होता और का हुई
13: भारती में।
1: हाँ रोवा लोग बताए लो रोवा लोग कैसन बानी? रोवा लोग इनके नाश्ता पानी भर की ना?
13: हाँ नाश्ता तो नहीं हो गए बा।
1: अच्छा
13: के फोन लगाओ तो मुझे लागी की ना लेकिन लाग गई।
1: चलिए तब तो ठीक है बाबा एक बार में लाग गई लगा। अच्छा
13: एक लाग गई इतना तो बार इतना तो हो ही नहीं सकते फोन लाग जाओ।
1: अच्छा
13: लगाओ तो नहीं बहुत 11 बजे तब से लगाओ तो नहीं अब जाके लागल बा।
1: चलिए ठीक है बाबा आज कौन सा गाना सुने एक बार?
13: आज गाना सुने एक बार छतरी न खोल बरसात में हिंदी गाना है वही वाला गाना सुना दीजिए।
1: और गाना एक ही सुना होगे बा?
13: आप दीजिएगा और सोनी मैम जितना सुनते हैं सभी का।
1: चलिए तब तो ठीक है बार और गाना प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
1: क्या कौन चल रहा
0: है? हाल तो मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हम तो ठीक बने। अच्छा, कौन सा गाना सुनेंगे
1: बताएंगे?
0: अच्छा, गाना खेल के सुनाओगे? ठीक बाबा, गाना प्ले करके नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrawar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 8029294911. Ji haan, 8029294911. To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
15: हेलो।
16: हाँ हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
16: वालेकुम मैडम।
15: वालेकुम अस्सलाम।
16: और सब क्या है, कैसा?
15: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
16: अपना भी बढ़िया है, हमको एक गाना सुनना था।
15: बता दीजिए कौन सा?
16: फिल्म का रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने।
15: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
16: सुनाना तो सबको है, जितने रेडियो रिंगिंग सुनते होंगे सब सुनेंगे।
15: अच्छा जी, चलिए।
16: आप हैं तमाम जितने रेडियो रिंगिंग सुनने वाले श्रोता है सब,
15: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: जी नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। मेरा तो ठीक है, आप
0: मिर्जाद मास्टर बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, अपना कहिए। बारिश तो हम लोग का सुबह
1: बारिश हो रहा है अपना।
0: जी जी, सब ठीक है अपना।
1: क्या हो गया उसे, इतना चिल्ला रहा है?
0: अच्छा, यही बैठ रहा है, पानी बरस रहा है, बैठ के चिल्ला रहा है।
1: अच्छा,
0: दुकानिये के पास हम लोग का। यार बहुत चलेगा आज?
1: हाँ चलेगा।
0: भारती जी बोल रही हूँ।
1: हाँ,
0: और सब रंजन परिवार सब कुछ ठीक है?
1: हाँ, सभी कोई ठीक है।
0: चलिए तो गाना सुना दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: छतरी न खोल बरसात में, गोपी किशन का गाना है, और सुनवाना चाहते हो? आपको सुनवाना चाहता हूँ, पूरी टीम को, सुनने वाले गाना से रोशन तिरोज में जितने लोग हैं अपना।
1: तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। हेलो।
10: हेलो, नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: मैं राजू गुजरा से बोल रहा हूँ।
9: जी, क्या हालचाल है आपका?
10: बढ़िया है, अपना बताइए।
9: हमारा भी अच्छा है। और
10: भारती मैडम जी बोल रहे हैं?
9: हाँ
10: मैं पहले सुन मैडम जी से बात किया था, अप्रैल में भी बात किया था। हाँ, अभी क्या है की अभी सावन आने वाला है, मेरे को सावन का एक गीत सुना दीजिए।
9: कौन सा गीत बताइएगा?
10: अभी कोई भी नया जो गीत निकला वही सुना दीजिए, भोजपुरी वाला,
9: सावन का। अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाएंगे भी?
10: हाँ, सभी अपने सुनने वाले भाइयों को सुनाएंगे, आपको और सभी रेडियो जितने हमारे सदस्य हैं।
9: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सभी साथ रेडियो रंजन में।

0: बाबा
1: हेलो
2: जी,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
2: जी। ना
1: हाँ,
2: और कैसन बने?
1: हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसन बने।
2: छुट्टी का?
1: अच्छा हाँ, आज तो सोमवार है ना।
2: छुट्टी का तो पता नहीं होती, हाजिरी लगाई होती। बारिश बंद भयल की होते बाबू?
1: ना अभी तो मैंने रुकल बाबे, सवेरे होत रहला।
2: सवेरे होत रहला, लोग बारिश खातिर परेशाने रहला। बारिश रोज रोज होते बा,
1: इतना ना होता की अब चारों तरफ खाली पानी पानी लोग
2: नहीं हो पाते। एने होके सब लोग एने तो गर्मी से बुरा हाल। तो भेज देती लो।
1: जाई जाई, बिल्कुल जाई।
2: कितना दिन में जाई?
1: अब देखी जब हवा घूम जाओ उन्हें उन्हें बदलिए जाई।
2: चले फिर, सोनी जी आयल बनी की ना?
1: आयल बनी।
2: एगो पप्पू अकेला एक गाना बा,
1: गाना
2: ठिकाना बा जिंदगानी के।
1: काट ठिकाना बा जिंदगानी के।
2: पप्पू अकेला के हाँ।
1: और गाना के सुनाने के
2: बाद सुना, और जितना हमारा नाम से जाने वाला लो सब लोग सुन लो। हम तनेश कुमार मित्रा दिल्ली से बोलो। तुम सुना दी आज गाना? चलिए ठीक है, कोनो बात नहीं की गाना सुना दी।
1: ओके, गाना रात प्ले करते नहीं, सुनते रहेंगे रेडियो रेंज 90.4।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493456551 या 9797065775।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
9: गुड
10: आफ्टरनून। हाल ठीक है? अभी तो गुड आफ्टरनून हुआ नहीं है, बस होने वाला है।
9: और सब बताइए?
10: और सब ठीक है।
9: अभी ट्विटर पे मेरे को याद आया था कि आज रिकॉर्डिंग हो रहा है।
10: मौसम पर तो बारिश हो रहा है और इस समय हल्का खुला हुआ है।
9: इधर बारिश हो रहा है क्या? अभी
10: नहीं, इधर खुला हुआ है। अभी रात को तो हुआ था ना,
9: रात को भी सूर्य की तरफ। अभी एक घंटा हो गया खोलने। पहचान रहे हैं क्या?
10: गणेश
9: जी। और कहाँ पे सुनील दी? कहाँ पे
10: सुनील दीदी है? इधर ही।
9: मनोरमा दीदी?
10: वो भी उधर ही है, अपना काम में लगे हुए हैं सब कोई।
9: आज भी लगाते लगाते परेशान हो गए तो कॉल लगा।
10: अच्छा, तो आधे घंटे हुए हैं।
9: अभी आधा घंटे बाकी।
10: और एक घंटे बाकी है।
9: एक घंटा हो गया, 12:30 बजे बंद होते हैं। धान रुपी हो गया अपना?
10: हाँ, मेरे यहाँ तो हो गया है।
9: खाना वाना खा के रहे?
10: खाना हम लोग खा के आते हैं। तो बताइए आज कौन सा गाना सुनिएगा? बर्बादी वाला ट्रेंडिंग चल रहा है, सारे लोग इसके डिमांड में लगे हुए
9: हैं। यही सॉन्ग सुना दीजिए।
10: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
9: सबसे पहले आपको सुनी दीदी को, नर्मा दीदी को, और पूरा रेडियो जो पंकज सर भी है उसके भी सुनू से जितना लोग सुन रहे हैं सब लोग का रहेगा।
10: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
1: हम तो ठीक हुआ।
0: तो कहा बतावे अभी?
1: पूछे ना पाठल वाली साहब।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया का? चलिए तब तो बढ़िया बा।
1: सरल हो गई बाटे?
0: हाँ
1: ठीक है बा। किना तो नहीं किना
0: करिश्मा?
1: सिंगल बनी और की?
0: हाँ
1: ठीक है बा, चिन्ह के चाहे ना। बोलिए, और सब ठीक बा ना?
0: हाँ हाँ, और सब ठीक बा।
1: बनी मैम कहा बनी?
0: हूँ के नहीं बनी, अपना काम में लागल बनी।
1: अच्छा
0: तो बताई कौन सा गाना सुने के बाद?
1: हमारा गाना सुने के बाद कबो ना कबो तो हमारे याद आई हो, आज ना तो चार साल बाद आई हो, ये सुने के बाद।
0: अच्छा, और गाना क्यों के सुना हो के बाद?
1: हाँ, सबसे पहले रहुआ के मतलब सोनी मैम के जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग क्या भैया। हाँ
0: अच्छा, चलिए सब ठीक बा। और सब ठीक बा ना?
1: हाँ सब ठीक बाटे, रघुआ दुआ से।
0: अच्छा, उन्हीं के दुआ से, भगवान जी के दुआ से?
1: ना, रघुआ दुआ से ठीक बा।
0: अच्छा चलिए, हमारे दुआ तो रो लोग इनके साथ है।
1: अब भाई फोन करे अगला हाँ। अच्छा
0: ठीक बा, तब गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744। ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम 90.4 एफएम में।
14: जी सर, तो मैं पप्पू यादव मोहल्ला गांधी नगर बधाई हूँ, यूपी वेस्ट।
13: जी कैसे हैं आप?
14: बहुत बढ़िया, आप कैसी हो?
13: मैं भी अच्छी हूँ।
14: और आप, इधर बारिश होती?
13: बारिश रात को हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, मतलब अभी खुला हुआ है, ठीक है मौसम।
14: अच्छा, खुशनुमा मौसम है। हमारी तरफ तो बहुत बारिश हो रही है अभी।
13: बारिश हो रही है आपके यहाँ?
14: जी।
13: और हो रहा है?
14: ये मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई है, करीबन 7 बजे से, 7 o'clock।
13: चलिए बढ़िया है, मौसम तो ठंडा हो ही गया होगा।
14: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ ही भेज देंगे।
13: मेरे यहाँ तो मतलब लगातार हो ही रहा है कल परसों से बारिश।
14: अच्छा, तो हमारे लेट चालू हुई है, पहले आप इन्हें एंजॉय कर लीजिए बारिश का। चलिए, बहुत बढ़िया बात।
13: और गाना कौन सा सुनना है आज?
14: जी
13: गाना बता दीजिए कौन सा सुनना है।
14: जी गाने के बोल रहेंगे, एक चम्मा तुम मुझको उधार दे।
13: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
14: जी मूवी का नाम तो पता ही होगा।
13: हाँ।
14: आप ही के लिए डेडिकेट रहेगा ये गाना।
13: ओके
14: जी, और हमारे जितने श्रोता लाइव सुनते हैं और जिनके नाम नहीं जानता, उनके लिए, सबके लिए डेडिकेट रहेगा ये।
13: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
14: रिकॉर्डिंग
13: अभी तो शुक्रवार वाला कॉल बाकी है, वो आज बच जाएगा, उसके बाद ये कल या परसों बजेगा।
14: वेट काफी करना पड़ता है।
13: हाँ, क्योंकि अब मान लीजिए रिपीट कॉल चला था उस दिन बर्थडे को, तो और शुक्रवार वाला बच गया है, तो उसको आज चलाना ही पड़ेगा।
14: उसको चलाना पड़ता है, कल मिलेगी रिकॉर्डिंग अपनी। तो सोनी जी को जरूर मैसेज देना, कॉल लगी है तो ठीक है ना।
13: रेडियो रेंज में कॉल के लिए धन्यवाद।

0: में आती है।
1: ओके मैम, मुझे तो
0: गाना बता दीजिए कौन सा सुनना है।
1: हाँ, गाना तो सुनना है।
0: ओके बता दीजिए।
1: गाने का बोल है जी मैम, तो गाने का बोल बताए ना। गाने का बोल है फूल कली। फूल कली गाना है ना।
0: फूल कली हाँ है,
1: उदित नारायण का आवाज है। वही वाला सुनना है मैम।
0: ओके तो गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ, भारत में रहने वाली भारती मैम को, सलाह को, सोनी मैम को, सभी सुनने वालों को।
0: ओके तो फिर चलिए गाना प्ले करें।
1: जी धन्यवाद एडवांस में।
0: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।
1: ओके मैम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
12: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, नमस्ते मैम।
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: कॉल में पकड़ा गया नंबर।
15: ना ना, अब भी फोन कट डाल हवे तेले राव राई आइए गई है।
14: हम थाला से रामाजी प्रसाद बोलता ने।
15: हाँ।
14: गाना बजाए रिमझिम बरसत बरखा, रिमझिम रिमझिम बरसत सावन के गाना भूला था, रिमझिम बरसता सावन होता।
15: हाँ है। और गाना क्यों कितना हो गया बा?
14: सब कोई सुने, हम सुने, जितना रेडियो रिमझिम सुनता सब कोई सुने।
15: अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। तो फिर गाना प्ले करता नहीं, सुनाते नहीं सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4
14: में बोल रहे
15: ना?
14: अच्छा, भारती जी।
15: हाँ
14: चलिए, ठीक है, नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है रूम 90.4 में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार,
0: हरमिंदर तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़
1: जी। कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है जी।
1: नाश्ता हो गया आपका?
0: जी नाश्ता हो गया है। बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी, काम भी कर रहे हैं। और सब बताइए आप?
1: हम सब भी ठीक हैं, और यहाँ भी सुबह बारिश हुआ था, अभी तो नहीं हो रहा है।
0: उधर तो रात से बारिश हो रहा है गोपाल नगर।
1: पूरा बारिश हो रहा है इधर,
0: पूरा रात पानी हुआ है। बच्चे लोग स्कूल नहीं गए, गाड़ी नहीं आया बारिश। गाना सुनवा दीजिए, कौन सिंह का बोलबम का गाना सुनवा दीजिए, कौन सिंह का आवाज।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे, सारे आदमी जीत रहे हैं, सारे सुनेंगे।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: नमस्ते।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 80029994 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
14: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार। रवा सवे के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे के कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथे राव दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव टावल जाओ सोटी बिरजा भार के।
1: मामी हाँ एक काम करा इनका जल्दी लेके चल जा। हम एकरा के देख ल की चाहत मामी जल्दी लेके चल जाए एकरा के
2: बिरजा भार।
1: हाँ
2: अरे घबरा मत ई तहार ब्याह ही हो एकर ना हेमंती हो
1: उसे का हो
2: देखो कितना दूर से आसरा लगा के तेरे पीछे ही पड़ल भैया। तू मर गए रहा बालू धसरेता में धस गए रहा तो जाके 12 बजे रात खान हमरे के जगो ले भैया हम सुतर रहनी हत आज एकरा के भगावे के कहता रह।
1: मामी हम इतने कहता नहीं कि जल्दी से लेके चल जा जल्दी से लेके चल जा।
2: अच्छा ये हम
1: अरे कहे के लियो ले हो एलू हमरे

देख ले रे की मार के मार ईमान के नहीं जल्दी भाग जल्दी लेके चल जा मामी जल्दी लेके चल जा हम देखी देखल चाहते करा के बहुत जल्दी लेके चल जा लेके जा लेके चल जा मामी इतना मारा था।

0: अब हाँ हेमंती अपने मामी के लेके चल गई। अब ये जो बिरजा भार अफसोस कर रहा मैंने कहा, हे भगवान बहुत अनर्थ कैली, अपने ब्याही के ऊपर हाथ छोड़ धनी, ऐसा हमरा ना कहल चाहत रहला, ना कहल चाहत रहला। ओह
1: लेकिन खातर मैंने
0: हाँ अब जैसे बिरजा भार झैले बने राय आज चल तने कौने तरह से भजन गावत तने कैसे
1: कैसे
0: अरे पन बिगड़ी

0: अब वहाँ से जोगी बिरजा भार गावत बजावत कहाँ जाता रहन,
1: कहाँ जाता रहे,
0: देखा तने सामने ठूठी पाकड़ पड़त या।
1: अच्छा
0: अब यही से देखी वही ठूठी पाकड़ तर कैसे जा रहा बने,
1: सुनाई सुनाई गोजी बाबा सुनाई जोगी बाबा।
0: अरे मथवा मुड़ल।

0: तब देखी बिरजाभार पहुँच गए ठूठी पाकर तर अब जो जाके कहते कि वो इतना बढ़िया स्थान कहीं ना मिली, आज हम यही जो आपन बिछौना लगाई आ यही जो आराम करी फिर सुबेरा होई तभी हमें दूसर राय पकड़ के चलब हम सूरतपुर जाए। अब जो अपन धल बड़े झोड़ी मंत्रा आ ध के वही ठूठी पकड़ी तर जा करके सुत गए। देखी सुतला के बाद आबोजू के कहानी वही ठूठी पाकड़ पर एगो जन कगवा बादिल बा बहुत दिन से जो होता कि दादा रे दादा अगर केहू ऐसा मुसाफिर आई तो उनका के छोड़ती ना। अब जो कगवा बादिल का कहता
1: बाप रे बाप का देखो तली
0: अरे किया हो रामा आरे टूटी के पकड़िया तरे जोगिया सुतलो बने रे
1: कौ कौ कौ

0: जोगी आज आके हमरे ठूठी पकड़ी तो सुतल बा, लेकिन का देखो तनी एकर दुनू नयन बा आ एकरे झोरी में दूगो पाकल पाकल सामान बा, लेकिन ये तरे खाएम नाही आ एकरे लीलारे पर मरी जरता। और कैसे हम खाएम, लेकिन नागिन के बोलावा तनी आ जब नागिन आई आ जब एकरा के डोस ले बस का करम एकर दोनों नय निकाल के खाई आ तब हम आराम कर। रे नागिन
1: काय काक भैया
0: हेने आ हेने कोहे
1: का हो
0: हेने आ हेने आ
1: का कहत रहा
0: देख चल चल आज हमनी के ठूठी पकड़ी तर हमनी के भाग जा गइल बा। बहुत सुंदर जोगी आयल बा।
1: कैसन
0: का जने कैसन आ जोगी आ सुत गइल बा आ देखना ओकरे झोरिया में दूगो पाकल पाकल सामान लौकता जने कि नहीं।
1: हाँ
0: आ ओकरे लीला रे पमरी ए जलता आ पड़िए सुंदर बा चल के ते डोस दे ओकर मरिया निकाल लेता नी दोनों नयन खा लेता नी आ झोरिया में जौन सामान बा बतौनो खा लेता नी।
1: ए काक भैया सुनो बताओ तनी। अरे कौन करनवा ए भैया
0: सुन सुन सुन सुन एगो काम करही ते हमसे खसूर पूछत रे।
2: हाँ
0: खसूर मत पूछ जब हाँ ये पूछत या कि कौन खसूरे के डोसम बिना खसूरे ना डोस सकिले
1: अब तक बताओ तनी कि कौन खसूरे हम डोसम खुजोगी के
0: कौन खसूरे।
2: अरे कौन करनवा ए भैया।

0: डस दे।
1: ए तर हम ना डसब। अरे भगवान की यहां से बड़ा बड़ा केल बनी। हमरा बड़ा दोष लागी। हम इनका के ना डसब ए तर से।
0: ना डस दे ते।
1: ना।
0: बुलाई अपने पूरे पटीदारी भर के कौवन के।
1: का कोलब हमार।
0: जवार भर के कौवा बोलवाए। आ मार के ठोरे से।
1: हां।
0: तोर जौन हो थुन बा। फोरवा दे। देख ले
1: बड़ा तार पलिवारी बाहु।
0: अबे पटीदारी पूरा नखे जुटर जले कि ना
1: कितना पलिवारी बात है।
0: जवार भर के कौवन के बुलाए। एगो होने बोलता बुलाई दे।
1: अरे सही है हो तार जगह तनी ढेर पलिवारी बा।
0: सुन बाकी ते सही पूछले हो।
1: हां
0: हमरा से कोनो खसूर पूछता रे।
1: हां
0: कि कोने खसूर हम दस
1: में कैसे हम दोष ले बता दो।
0: देख जब ते खसूरे पर डसबे ए तर ना डस सकेले।
1: हां
0: त हमें सूखल पेड़ पर चढ़ जतानी।
1: अच्छा
0: पकड़ी के पेड़ पर।
1: हां
0: आ ओई पर से तुर के एगो डाढ़ी गिराए आते जोगिया के गोंतारी बैठ रह। जब जोगिया के ऊपर गिराए त जोगिया जब हाथ गुड़ चलाई।
1: हां
0: हाथ गुड़ जब छपटियाई बस ओई जते बैठ रहिए बस ओई जब तोरा धाका लग जाई। जब तोरा घाव लग जाई बस डस के चल।
1: अच्छा चलो ले हम चलो तनी वही जो आवाज़ जो बैठा रहा लेकिन चढ़ के तू
0: हम चलो तनी ऊपर
1: चल रुक जा हम बताओ तनी लेकिन हम पड़ा सोचो तनी का करी का ना करी।
0: बुलाई रे कौन के
1: ना मत बुलाई हो। अब जा तनी हम बैठा तनी लेकिन देखो हमरा दोष ना लगे भगवान की आए दादा।
0: तोरा तन को दोष ना लगे
1: भैया जल्दी
0: चल लकड़ी गिरा होता नहीं हम वो जाते बैठ रहे
1: बैठ रहे बानी।
0: देख गिरा वाला बानी लकड़ी एक ठो
1: एक लकड़ी से तो कुछ ना भाई दादा जोगी अब ने हाथे गोड़ ना छटपटो लस
0: एगो मोट दाढ़ी तुरी का रे
1: पूरा मोट के दाढ़ी तुर के गिराओ
0: छाता
1: सुन लो हमार बात सुनो। हम देखो दो बेर गलती पाए तो ना डसम तीसर का गलती पाए तबे हम डसम कि हमरा भगवान की यहाँ दोष ना लगी।
0: काओ
1: आय दादा मत बोलो हो मत बोलो हो आय मैं मत बोलो
0: गौरी दाढ़ी अब गिरा होता नहीं।
1: हाँ एवं हम ना डसो दो दाढ़ तुर के गिरा लो हम ना डसो
0: और को को गिराई
1: एक और ही गिरेगा तो हम डसो
0: काओ रे मत ना मन पे काओ
1: मत बोलो
0: आई को मन के कारे हम
1: मत बोलो
0: कुर्तला सराय पूरे जवार के कौवा कूड़ी हमारे पटीदारी हो
1: जाए। अबे हम भाग जाए बियली में ढूक जाए बबे
0: जल्दी लेके आ सर तोरा का बियली में से हमनी के खोज के निकाल ले।
1: हां अबे हम ढूक के बियली में
0: मोछ धो के तोर ठोरे से अबे हम ना चावे लागो हम काऊ कर।
1: ए का भैया ए गोरी दाढ़ी जल्दी गिरा दो।
2: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98527 88291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84/28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं पैर छू के प्रणाम करता नहीं चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत। हंसत रही मुस्कुरात रही नमस्कार राम, राम।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, सुरक्षा बलों ने लोक भवन घेराव के प्रयास को किया नाकाम। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 13 विधेयक विधानसभा में पारित, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के छात्रों को राज्य में ही मिलेगा बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे की स्थिति बने रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
7: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
6: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आज राजधानी पटना में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से वामपंथी दलों के छात्र संगठन शामिल थे। एक रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने आज पटना के गांधी मैदान से लोक भवन तक विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान कई स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़पें भी हुईं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी लोक भवन और लोक सेवक आवास तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि सुरक्षा बलों ने इस प्रयास को विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
8: पेपर लीक मामले को लेकर

0: हो रहा है वो धीरे धीरे के पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। इससे पहले ये पूरे एजुकेशन रिलेटेड था, ये एकदम सही था, लेकिन हम धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, ये एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा।
1: विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 प्रमुख हैं। विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य छात्रों को राज्य में ही बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।
2: बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से लाखों बच्चे दूसरे राज्य में हमारे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा भी है कि एक यूनिवर्सिटी के हमसे उनके संस्थापक मिले, उन्होंने बताया कि जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी में 11,000 बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं, अमेठी में लगभग 30,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में लोग आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए इसमें संशोधन लाने का काम किया गया।
1: विधानसभा ने शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने सदन में विधेयक पेश करते हुए इसके प्रावधानों से अवगत कराया। विधानसभा में आज बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। श्री प्रकाश ने बताया कि विधेयक के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में होर्डिंग और बैनर जैसे विज्ञापनों पर शुल्क लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के लिए नक्शा स्वीकृत कराने को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया है।
3: ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हम लोग देख रहे होंगे शहर के ही भांति बड़े बड़े अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। आज के समय में जो भी निर्माण हो रहा है अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है, ये सभी चीजें हो सके इसके लिए एक प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है पंचायतों के क्षेत्रों में उनसे संबंधित जो भी नक्शा है उसको पास कराने की व्यवस्था हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हो।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किए जाने की घोषणा की।
4: प्रश्न है कि बिहार पंचायत संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें जो विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, बिहार पंचायत संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ।
1: इससे पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन में कम बारिश से किसानों की हो रही समस्या का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरत होने पर किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जाएगा।
2: माननीय सदस्यों की चिंता है कि कम बारिश हुई है और लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोग जो किसान भाई है, इसलिए हमने दो तरह की व्यवस्था सरकार की है। एक तो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पर्याप्त बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि सभी जगह किसानों को उनके खेत में पानी पहुंचाने का काम कर सके। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिस जगह भी सुखाड़ की स्थिति होगी वहां डीजल अनुदान देने का काम सरकार तुरंत करेगी।
1: विधान परिषद में आज की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की टीका टिप्पणी को लेकर जोरदार बहस हुई। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आज की कार्यवाही में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 23 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा जिले के पुरौनी में सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि नदी के तटबंधों पर भारी दबाव को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल स्थित कोसी बराज से आज शाम 4 बजे तक 173,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जबकि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र बराह से 111,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद तटबंधों पर भारी दबाव है। इधर मौसम विभाग से मिल रही भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर भी प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने पूर्वी कोसी तटबंध और अस्पड़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं और विभागीय कर्मियों को तटबंधों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: कटिहार जिले में लगातार बारिश के कारण महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे कई इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: जिले में लगातार बारिश के कारण गंगा, महानंदा, कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार महानंदा नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर 55 सेंटीमीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण तटीय क्षेत्रों में कटाव से लोगों में भय का वातावरण बन गया है। प्रशासन ने कटाव प्रभावित इलाकों में बाढ़ निरोधात्मक कार्य तेज कर दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार गृह तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने पटना में 46,26,00,000 रूपये की लागत से नवनिर्मित 3 गंगा घाट, भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट का लोकार्पण भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पटना में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के पास मार्च पहुंचने पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोगों को हल्की चोट लगी है। नालंदा विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के बीच आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित सतत विकास, प्रौद्योगिकी प्रसार, कौशल विकास और वैज्ञानिक जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और CSIR के महानिदेशक डॉ एन कलय सेल्वी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने रेडियो के प्रसारण को डिजिटल युग में भी प्रासंगिक बताया है। उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारण समाचार और मनोरंजन के स्रोत होने के साथ ही सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। राज्य के दो तेज गेंदबाजों वासुदेव प्रसाद और रिंकल तिवारी का चयन MRF पेस फाउंडेशन के लिए हुआ है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों उदीयमान खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष MRF कैंप के लिए देश के चुने गए दोनों खिलाड़ी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अरवल के सिविल सर्जन के साथ मारपीट की घटना के विरोध में सदर अस्पताल की OPD सेवा आज पूरी तरह ठप रही। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के आह्वान पर चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। जहानाबाद जिले के कृषि कार्यालय में आज प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि 980 मीट्रिक टन यूरिया और 200 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध है। रोहतास जिले के धौटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर एक नर्सिंग छात्र की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, सुरक्षा बलों ने लोक भवन घेराव के प्रयास को किया नाकाम। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 13 विधेयक विधानसभा में पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के छात्रों को राज्य में ही मिलेगा बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
12: All right.

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205062112 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे।
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
7: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
6: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के आधार पर इन पदों को भरा जाना है। आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष, चिकित्सा अधिकारी 40 वर्ष, निजी सचिव आयु सीमा 35 वर्ष, तकनीकी सहायक आयु सीमा 32 वर्ष, प्रयोगशाला सहायक 30 वर्ष और प्रयोगशाला परिचर 30 वर्ष। निर्धारित आवेदन प्रारूप अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम शर्तों और अन्य विवरण के लिए देख सकते हैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2026, जबकि आवेदन की मूल प्रति जमा कराई जा सकती है 17 अगस्त 2026 तक। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन के द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट nidmp.ac.in। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 रहेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है निदेशक वित्त एवं प्रशासन, निदेशक परियोजना, संयुक्त निदेशक परियोजना, उपनिदेशक तकनीकी तथा सहायक निदेशक वित्त एवं प्रशासन। विस्तृत पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रारूप के लिए देखिए वेबसाइट nrida.dord.gov.in। समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र कोच्चि में इन पदों को भरा जाना है। परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 2 सलाहकार, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 कार्यकारी सहायक, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो तथा अनुभाग अधिकारी। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतन संबंधी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए वेबसाइट www.cmlre.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रमुख सलाहकार नीति नियोजन।

0: स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के कुल दो पद रिक्त हैं, एक पद अनारक्षित है जबकि एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
2: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
5: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
6: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
14: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
15: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
14: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
14: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
15: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
15: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
20: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
22: ठक ठक
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सूर्य घर बिजली योजना को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। फुलवरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। टीबी उन्मूलन को लेकर की गई बैठक। नहर में डूबने से एक युवक की मौत और सड़क हादसे में भी हो गई एक शिक्षिका की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की। इस दौरान बिजली विभाग के पदाधिकारी भी और जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और सोलर पैनल लगाने वाले अधिकृत वेंडर उपस्थित रहे। बैठक में योजना के प्रगति पर समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक पात्र एवं इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं वेंडरों को निर्देश दिया कि लाभुकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं तथा समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ अधिक से अधिक इच्छुक और जरूरतमंद लोगों को देने का काम करें। बैठक में बताया गया कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक लाभार्थी सरकार के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र पर लगभग 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 तक का केंद्रीय अनुदान उपलब्ध है। 4 किलोवाट अथवा उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 78,000 तक की ही सब्सिडी दी जाती है। चयनित वेंडर के अनुसार कुल लागत में अंतर हो सकता है। जिलाधिकारी ने फुलवरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाखाओं के निरीक्षण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यालय व्यवस्था एवं लंबित मामलों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड निर्माण और वितरण की प्रगति पर भी जानकारी ली, साथ ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराएं तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव के पास गंडक नहर में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान बंजरिया निवासी भूटेली महतो पिता भिखारी महतो के रूप में की गई। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि मृतक मछली पकड़ने के लिए गंडक नहर में गया था, इसी दौरान नहर में डूबने से इसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तो शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। जिले में चल रहे टीबी उन्मूलन अभियान के प्रगति पर विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन, संचारी रोग पदाधिकारी, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के भी प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। भोरे थाना क्षेत्र के काली मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक शिक्षिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षिका मोटरसाइकिल से जा रही थी, इसी दौरान एक बंदर उसके मोटरसाइकिल से टकरा गया जिससे शिक्षिका गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनकी मौत हो गई। मृत शिक्षिका की पहचान दीपिका सिंह के रूप में हुई है। ये विजयपुर प्रखंड के रानीपुर मध्य विद्यालय में अपनी सेवा दे रही थी और ड्यूटी के लिए ही सुबह जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद शिक्षिका के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास 477 लीटर देशी शराब को पकड़ा है। यह शराब ट्रक में भर कर लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया। इस मामले में माझा थाना क्षेत्र के सिपाह खास गांव के रहने वाले शराब तस्कर सूरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जिला प्रशासन ने सरकारी होर्डिंग्स पर निजी एवं व्यक्तिगत फ्लैक्स और बैनर टांगने का संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि जहां कहीं भी सरकारी होर्डिंग्स लगा है वह सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाया गया है। बहुत सारे लोग यहां अपना निजी और व्यक्तिगत बैनर पोस्टर लटका देते हैं जो अवैध और असंवैधानिक है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जनता से अपील की गई कि ऐसे सरकारी होर्डिंग्स पर कोई भी अपना निजी और पर्सनल प्रचार प्रसार का बैनर न लगाए। कटिहार थाना की पुलिस ने शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और शराब के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजन पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कटिहार के नेवरी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही कटिहार पुलिस ने 24 लीटर से अधिक शराब के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया अभियुक्त विजय कुमार है जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर बेकौली गांव का रहने वाला है। इसके पास से 24 लीटर से अधिक शराब मिली है। इसकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा कटिहार पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कटिहार के रामपुर कला का रहने वाला बताया जा रहा है। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल को बड़ी सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां 5 बेड के अत्याधुनिक ICU का लोकार्पण करेंगे। नई सुविधा शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। इधर भूमि सर्वे का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में थामे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत भवन में किश्तवार और प्लॉट वेरिफिकेशन का कार्य हुआ। इस दौरान ग्राम सभा का आयोजन किया गया। यह सभा मौजा गवंदरी, गवंदरी फकीराना एवं रामचंद्रपुर के रैयतों की उपस्थिति में हुआ। पंचायत के मुखिया उपेंद्र गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। ग्राम सभा में विशेष भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों की जानकारी दी गई तथा रैयतों को प्लॉट सत्यापन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पूजा कुमारी, कानूनगो तबरेज आलम, SSA अनिकेत राज सहित तमाम कर्मी और पदाधिकारी तथा भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उत्पाद पुलिस ने राजापुर पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को पकड़ा है। इनकी मोटरसाइकिल से 36 लीटर शराब मिली है। एक आरोपी बरौली का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा नगर थाना क्षेत्र के हरबासा का रहने वाला दीपक कुमार यादव बताया जा रहा है। साथ ही उत्पाद पुलिस ने शामपुर नहर के पास से भी 105 लीटर शराब पकड़ी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जिसमें एक आरोपी मनीष यादव गोपालपुर थाना क्षेत्र के बनकटा का रहने वाला है और दूसरा रोहित कुमार राय, यह भी गोपालपुर का ही निवासी है, और तीसरा आरोपी रोशन कुमार भी गोपालपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। राज्य उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया, स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार अभियान और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक तथा आवास पर्यवेक्षकों के साथ कार्यों का बिंदुवार जायजा भी लिया गया। उत्पाद पुलिस ने जादोपुर खैराटवा के रहने वाले प्रभु यादव और मोहन यादव को भी 36 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। इनकी भी मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को ग्राम बीलरपुर स्थित शिव मंदिर के पास एक महिला से उसका मंगलसूत्र, कान का झुमका और मोबाइल फोन झपट कर भागने का सूचना मिला। इस मामले में मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने मानवीय सूचना के आधार पर और CCTV फुटेज इत्यादि का अवलोकन करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और इसी मामले में पुलिस को जानकारी मिली और तमाम साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ टमाटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो मोहम्मदपुर के सलेपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पास से पूछताछ के बाद आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की और अन्य अभियुक्तों से गिरफ्तारी को लेकर इसने जानकारी भी दी है, जिसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सूर्य घर बिजली योजना को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। फुलवरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। टीबी उन्मूलन को लेकर की गई बैठक। नहर में डूबने से एक युवक की मौत और सड़क हादसे में भी हो गई एक शिक्षिका की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
24: सुनिए सुनिए सुनिए,
25: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
24: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
25: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
24: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
26: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
27: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
26: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
27: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
26: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
27: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
25: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
26: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमरजैट पर।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
11: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
11: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज, और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम के हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:28 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप गाने के फरमाइश करें तो पुराने गाने के फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको हम सुना सकें। ऐसा ना है कि गाने की फरमाइश आप करें और नए गाने के फरमाइश कर दे तो हम आपकी फरमाइश रोक देंगे और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे और गाने नहीं सुन पाएंगे। तो आप फाइनली पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े क्योंकि कार्यक्रम जो है पुराने गाने के लिए है। तो आप अभी टेक्स्ट मैसेज करें 72 77 16 65 96 पे। हाँ, अपना नाम और पता जरूर बताएंगे ताकि आपकी पहचान के साथ आपकी फरमाइश पूरी की जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार तमको ही रोड कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में रंजन जी। और कहते हैं कि हमारा भी फरमाइश है गाने का बोल है, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। बिल्कुल काफ़ी प्यारा गाने का फरमाइश है। तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार, जय माता दी, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना। और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी और बने रहे हमारे साथ। आप अपना बताएं कि आप कैसे हैं, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आगे अभी दो ही मैसेज पहुँचे हुए तो चलिए अब मैसेज तो शामिल कर दिए गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं। और पहले गाने के फरमाइश काफ़ी प्यारा पहुँचा हुआ है रंजन जी के तरफ से, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। प्यार आ गया रे, सुना जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो 90.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए छोटा सा एक टेस्ट मैसेज करना है, और मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे तो आगे बढ़ते हैं और आगे मैसेज शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, लेकिन आप कौन? और इस मैसेज को पहुंचाने वाले पीछे के मैसेज से देखा जाए तो निशा सिंह हरदिया से जुड़ी हैं, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि उजर बगुला बिना पियोरो पिपरो ना शोभे। सुरेश शाह तिरविरवा से इस गाने के फरमाइश करते हैं तो पूरा करने की कोशिश है आज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है राजू कुमार मधुसरिया से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश चलिए प्ले किया जाए। और यहाँ पे रोहित जी की तरफ से गाने के फरमाइश तो नहीं है, तो हम त्रिबिरवा से मैसेज पहुँचाने वाले सुरेश शाह जी की फरमाइश सुनते हैं, प्ले करते हैं, देखते हैं इनकी फरमाइश कैसा है।

क्रेडिट एमसीएम नेट पर 4 FM सुन रहे हैं और सुरेश शाह जी आपके गाने जो हैं वो समझ में नहीं आ रही, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं और जो भी रिजल्ट निकल रहे हैं सर्च के माध्यम से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और ही गाने की फरमाइश और ही गाने के रिजल्ट निकल रहे हैं, तो आप फिर से गाने का नाम बताएं और कुछ और अलग या दूसरी लाइन हो तो बताएं इसमें का कि आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं। यहाँ पे आगे भी कई मैसेज पहुँचे, आगे मैसेज पहुँचा, हाय हेलो सर, मैं संध्या कुमारी बड़हड़ा से और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि हमें भी गाना सुना दीजिए, हो जाए ना प्यार कहीं। शुभम कुशवाहा बंजारी से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सुनो सर गाना बजाने के लिए धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमसिम सुनने के लिए और सुनते रहें, बने रहें हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम राजू जी की प्ले करते हैं और सुरेश शाह जी आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि आप इसी गाने को सुनना चाहते हैं तो दूसरी लाइन बताएं और ठीक से थोड़ा बताएं ताकि आपके गाने हमें मिल सके और हम आपको सुना सकें। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं राजू जी की और सुनते हैं इनके फरमाइश, तब तक अपना लाइन हमें फिर सेंड करें।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम एसएमएस फरमाइश के साथ बने हुए हैं। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनम बाबू, कैसे हैं, हाल खबर बताएं। और हम भी जुड़ गए हैं और मैडम जी भी साथ में हैं। इन्हें एक इनका एक फेवरेट सॉन्ग सुना दे, फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भाई, स्वर है हेमलता जी का, और ले तो आयो हमें पलकों के छांव में। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय भैया, मैं पलक पांडे भिड़िया से, और मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। किशोर कुमार की आवाज़ों में गाने की फरमाइश करती हैं, हर शाम आँखों पे तेरा आँचल लहराए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हमारा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाएंगे, आपकी भी बजाएंगे, थोड़ा सा सब्र करें। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं संध्या जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। तो चलिए आपके भी गाने हम सुनाते हैं और सुनते हैं रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन। सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। प्लीज सिमरन, प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज सिमरन।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और काफ़ी प्यारा दर्द भरा सॉन्ग दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानो। चलिए अच्छी बात है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है किशोर कुमार के आवाज़ में तो बिल्कुल इनके गाने हम सुनाएंगे और इस गाने की फरमाइश करती हैं पलक पांडे भिड़िया से और आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज शामिल कर ले फिलहाल, उसके बाद से गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कितनी जल्दी ये शाम आ गई, गुड नाइट कहने की बात आ गई, हम तो बैठे थे सितारों की महफिल में, चांद को देखा तो आपकी याद आ गई। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल दीजिएगा। सबीना खातून दुदुलिया से तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और नमस्ते भाई, कैसे हैं सभी दोस्त, कैसे हैं, ठीक है ना? सुपर गाना बा भाई, सविता चौहान भुज छपरा से मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक यू सर गाना बजाने के लिए, आपको भी धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और नाइस सॉन्ग रोशनी कुमारी मानिकपुर से जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हमें भी गाना सुनना है, ओ हमारा भी, तो बिल्कुल इसके बाद आपकी फरमाइश हम सुना देंगे, थोड़ा सा और सब्र कर ले। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमछीएम 94.4 FM पे किशोर कुमार जी की आवाज़ में काफ़ी प्यारा सॉन्ग की फरमाइश,

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम जिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें उस फरमाइश का, और आगे मिसेज कहीं पहुँचे, आगे मिसेज देखा जाए। और आगे मिसेज लिखा गया है कि राधे राधे सोनू सर, मुझे गाना सुनना है कभी खुशियों का गम का। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि लाजवाब काफ़ी मीठा सॉन्ग, 53 वर्ष पुराना गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ में। MD नौसाद दरभंगा बजीतपुर से मैसेज करते हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है नौसाद जी। आगे मैसेज, थैंक्स सोनू भैया गाना बजाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, पलक पांडे। और आगे मैसेज पहुँचा, काफ़ी प्यारा सॉन्ग रोशनी मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारा, तो चलिए आपका भी हम गाना सुनाते हैं। और इस गाने के फरमाइश करते हैं शुभम कुशवाहा बंजारी से। गाने का बोल देते हैं, हो जाए ना प्यार कहीं, लेकिन ऐसा नहीं, गाने का सही बोल है कहीं प्यार हो ना जाए।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे काफी प्यारा गाना सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है एके पांडे जी के तरफ से और कहते हैं कि मेरा गाना नहीं बजा। बिल्कुल, कल आपके गाने हम बजा चुके हैं, कल या परसों आपने गाने की फरमाइश किए हुए थे। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, इसी गाने की फरमाइश थी आपकी और हमने आपके मैसेज आने के बाद ही गाने को प्ले किया। सो आप नहीं सुन पाए तो अब मैं क्या करूं, अब आगे जिद नहीं करना है क्योंकि दूसरों को भी मौका देना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर गाना बजाने के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है लवली गुप्ता जी की तरफ से और गाने का फरमाइश है लेते आए हो हमें सपनों के गांव में। और इस गाने को डेडिकेट किया गया है सबसे पहला नाम रोशनी शफाक हिना हजरा शाहजहाँ सबा सबीता सबीना गुड़िया बेटी निशा नीतू खुशी और इस मैसेज को तो पहुँचाई हैं लवली गुप्ता, साथ में इनके सर जी हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। तो चलिए हम सभी सुनेंगे और इंजॉय करेंगे। आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

टेडे एम सी एम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग हेमलता जी की आवाज़ में। और यहाँ पे आगे मिसेस कई पहुँचे हुए, लेकिन कई तो गाने हम नहीं सुना पाएंगे, अंतिम गाने हम सुनाएंगे। और वो भी अंतिम गाने की फरमाइश कहा जा रहा है कि अपने पसंद से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, लेकिन क्या ही करें, हम सुना रहे हैं आप सभी से। हम सभी कोई भी कार्यक्रम में हाजिर होते हैं, लेकर हाजिर होते हैं लोग, तो आप लोगों की इच्छाओं के अनुसार गाने सुनाने के लिए हाजिर होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम आप लोगों के माध्यम से तो हम आपकी फरमाइश सुना सके। उस समय आपको दिया जाता है कि आप इस समय अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं, उस समय तो आप लोग अपने पसंद के गाने सुने। इस गाने की फरमाइश इस मैसेज को पहुंचाने वाली निशा सिंह है, हरदिया से काफ़ी दिन के बाद जुड़ी हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आगे आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी गाने की फरमाइश करनी हो तो अपना पसंद ज़रूर बताएंगे। ये नहीं कहना है कि अपने पसंद से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। फिलहाल हम समय देखते हुए कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे, कई मैसेज भी आ रहे हैं तो मैसेज तो देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि बिल्कुल प्यार के छाँव में बैठा के रखिएगा भैया भाभी को। वैसे काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा भाभी आपके द्वारा, दिल से थैंक्स मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज लिखा गया है कि गीत सुनावे खातिर सोनू बाबू को शुक्रिया। लवली गुप्ता जी मैसेज करता नहीं रहो के धन्यवाद बा, रेडियो रिमझिम सुने खातिर ऐसे ही कार्यक्रम में हमेशा सुनत और जुड़त रहें और गाने की भी फरमाइश करत रहें, बस सप्ताह में एक ही बार कैसे कि दूसरा के भी ध्यान रखे के बा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए एक कार्यक्रम के समाप्त करें। फिलहाल रवा सब इंजॉय करिए अंतिम गाना के साथ है, अपने पसंद से गाना प्ले करता नहीं, काफ़ी प्यारा सॉन्ग बा। और हमके दी जाए कि इजाज़त, सुनते रहें रेडियो एम सी एम 94.4 FM जौन हमेशा कहला सुने दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुल कर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
4: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
3: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has earmarked nearly 40,000 crore rupees for the scientific closure of abandoned coal mines with a target of closing over 147 identified coal mines by 2027-28. Addressing the release of India's first annual report on scientific mine closure titled Aroh in New Delhi, Mr. Reddy said the government no longer views mine closure as the end of mining activity, but sees it as the beginning of new opportunities for communities and the environment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Canadian counterpart Anita Anand this afternoon on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And that is the end of this news bulletin.
5: अब सुनिए
0: आज शाम 6:30 बजे।
5: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.
2: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैल ही ना सुन।

0: परेशानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुनी, जा जा के तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैली ना।

0: परेशानी, हम जा तानी, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरनवा के बाप तोरा बाप तोरा छोड़ गई ले हमरे अंगन वहाँ
1: तो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम. और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ. यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911. जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं. और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं की फरमाइश.
4: हेलो.
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में.
5: जी मैं विकास जी बोल रहा हूँ, चिंतापुर से.
4: कैसे हैं आप?
5: जी नमस्ते मैम.
4: नमस्ते,
5: क्या हाल चाल है मैम?
4: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए.
5: बहुत बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैडम?
4: हम भी तो ठीक ही हैं.
5: अच्छा, आज आपका कॉल लगाते लगाते मैं कितना 10-15-20 साल ही लगाए आपका कॉल.
4: अच्छा,
5: सोचे की 12:15 हो गया, लगाता हूँ और काम धाम हो रहा है. अभी एक घंटे के बाद लेन चौन होगा.
4: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आज?
5: अच्छा, वो वाला गाना बजा दीजिएगा. दिल न लगई है फिर जाने आई है, ये भी बजा सकते.
4: okay.
5: ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, तो जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको. ठीक है मैडम, और सब बढ़िया है ना मैडम?
4: हाँ हाँ, मेरा बढ़िया है.
5: ठीक है,
4: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम.
5: ठीक है, नमस्ते मैडम.
4: नमस्ते.

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, झारखंड से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: भारती मैम बोल रहे हैं ना? जी जी, आज सुना दीजिए पुरानी फिल्म है मैम, घर परिवार। गीत के बोल रहे, समय बड़ा बलवान, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान। गीत के बोल रहे सर।
0: ओके,
1: जी सबसे पहले मैम आपको और रेडियो रेमियो के जितने लिसनर हैं सबको, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उन सबको भी, विष्णु प्रसाद यादव, मदन कौल, शशिधर प्रसाद यादव, किशनु कौल, राजकुमारी, प्रभु कौल, भोलानाथ कौल, संजय कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम,
0: रेडियो 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैडम, नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: ओके, तो आज हमको मैडम फोन लगाना, आप आवाज आपका कुछ अलग सा लग रहा है जी।
6: मेरा आवाज
5: भारती जी है या सोनी जी है?
6: हम तो भारती ही बोल रहे हैं अभी।
5: अब आवाज हमको सही आने लगा ना। पहले हम कंफ्यूज हो गए, बहुत पतला सा आवाज आया पहले।
6: अच्छा,
5: इसीलिए कंफ्यूज हो गए हम। तो आज गाना सुना दीजिए, एक दुनिया है मैं फिर मेरे काम की नहीं।
6: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
5: अरे पहले बाबा तो आपको क्या कहे, बार बार आप कहना पड़ता है आपको। पहले आपको आज पहले सोनी जी को।
6: अच्छा जी, चलिए।
5: और एक है वो कौन, क्या नाम है, उन भूल जा रहे हैं।
6: सोनू।
5: और सोनी जी को उनका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है। उनका भी प्रोग्राम मैं सुनता हूँ, प्रोग्राम दे रहे हैं वो। हाँ, सोनू जी का। और उसमें जो है वो रेडियो रिमझिम का जो मेन आते हैं उसके साथ जो बातचीत होती है, लोगों का सब बातें आता है तो कवर करते हैं, उसके अनुसार जो होता है जवाब देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ये प्रोग्राम है रेडियो रिमझिम, झंडा लहरा दिया है, पूरा झंडा लहराया हुआ है। हर सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं और हमको जो है ना भारती जी को एक ही प्रोग्राम सुनना बाकी है, वो एक वो वाला प्रोग्राम आता है ना।
6: कौन सा?
5: और सोनी जी रहती है उससे ज्यादा,
6: भोजपुरी एक्सप्रेस।
5: हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस में।
6: अच्छा,
5: उसमें आप आ जाती तो 4 चांद लग जाता। चलिए मैडम, तब हमको अभी गाना सुनवा दीजिएगा। आइए, जो बातें हो जिसको काट दीजिएगा। हाँ, सुनवा दीजिएगा गाना, ये दुनिया है महफिल मेरे काम के।
6: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते।
0: कैसी
1: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: मैं खाली पर मैसे मर गाना होला।
1: ना ना, अभी सब क्योंकि गाना पेंडिंग में बा, अभी शुक्रवार वाला गाना नहीं है बाजा।
0: हाँ तो बुधवार वाला नहीं के बजला मर गाना।
1: अच्छा ना, बुधवार वाला बाज गई बाबे, क्या इसकी सब कॉल बजा दिलवानी हम। जन शुक्रवार के जन बानो उहे बाजल बाबे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: और बताइए, अच्छा बने नो?
1: हाँ हाँ हम तो अच्छा बानी।
0: बारिश होता खूब?
1: रात भर बारिश होता और ये बड़ा से खुल जाता।
0: अच्छा ठंडी मौसम बा।
1: हाँ तो आज कौन सा गाना सुनम बताई।
0: सुने के बाद नवका गायिका लोग के
1: ठीक और
0: रोहित रोशन
1: कौन सा गाना,
0: बाबा धाम के गाना।
1: कौन सा
0: रोहित रोशन बाबा धाम का गाना नहीं कौन चला है?
1: अच्छा
0: वही गाना।
1: अच्छा जी चलिए, और गाना क्या कुछ सुनाऊं के बाद।
0: आपको आज इतना रेडियो रिमझिम मारे है, सब दोस्त सुनते हैं सबके साथ।
1: चलिए फिर गाना और प्ले करते नहीं, सुना ट्रेन सबके साथ रेडियो रंजी 90.4।
0: जी मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हाँ हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
7: और सब क्या है, कैसा आप?
6: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
7: अपना भी बढ़िया है। हमको एक गाना सुनना था।
6: बता दीजिए कौन सा।
7: फिल्म का रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से। मैंने
6: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
7: सुनाना तो सबको है, जितने रेडियो रिव्यू सुनते होंगे सब सुनेंगे।
6: अच्छा जी, चलिए।
7: आप हैं तमाम जितने रेडियो रिव्यू सुनने वाले श्रोता है,
6: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिव्यू 90.4 FM।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के।

0: जी नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। मेरा तो ठीक है, आप
0: मिर्साद मास्टर बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, कैसे हैं?
0: ठीक है, अपना कहिए। बारिश तो हम लोग का सुबह
1: बारिश हो रहा है सर।
0: जी जी, सब ठीक है अपना?
1: क्या हो गया उसे, इतना चिल्ला रहा है?
0: चला यही बैठ रहा है, पानी बरस रहा है, बैठ के चिल्ला रहा है।
1: अच्छा,
0: दुकानिये के पास हम लोग का एयरबस चलेगा आज?
1: हाँ चलेगा।
0: भारती जी बोल रही हूँ?
1: हाँ,
0: सब रिमझिम परिवार सब कुछ ठीक है?
1: हाँ, सभी कोई ठीक है।
0: चलिए तो गाना सुना दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: छतरी न खोल बरसात में, गोपी किशन का गाना है, और सुनवाना चाहते हो? आपको सुनवाना चाहता हूँ पूरी टीम को, सुनने वाले सुनाने गाना से रोशन तिरोज में जितने लोग हैं अपना।
1: तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। हेलो।
5: हेलो, नमस्ते मैडम।
4: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: मैं राजू गुजरा से बोल रहा हूँ।
4: जी, क्या हालचाल है आपका?
5: बढ़िया है, अपना बताइए।
4: हमारा भी अच्छा है। और
5: भारती मैडम जी बोल रहे हैं?
4: हाँ।
5: मैं पहले सुन मैडम जी से बात किया था, अप्रैल में अभी बात किया था। हाँ, अभी अभी क्या है कि अभी सावन आने वाला है, मेरे को सावन का गीत सुना दीजिए।
4: कौन सा गीत बताइएगा?
5: अभी कोई भी नया जो गीत निकला है वही सुना दीजिए, भोजपुरी वाला
4: सावन का।
5: हाँ,
4: अच्छा। और सॉन्ग किसी को सुनाएंगे भी?
5: हाँ, सभी अपने सुनने वाले भाइयों को सुनाएंगे आपको, और सभी रेडियो जितने हमारे सदस्य हैं।
4: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सभी साथ रेडियो रिमझिम।

0: बाबा।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
2: आरती जी ना।
1: हाँ।
2: और कैसन बने?
1: हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसन
2: बने। छुट्टी का?
1: अच्छा हाँ, आज तो सोमवार
2: है
1: ना।
2: छुट्टी का तो पता नहीं होती, हाजिरी लगाई होती। बारिश उरिश बंद भयल की होते बाबू?
1: ना अभी तो मैंने रोकल बाबे, सवेरे होत रहला।
2: अच्छा सवेरे होत रहला। पहले लोग बारिश खातिर परेशाने रहला, अब बारिश रोज रोज होते बा।
1: इतना ना होता की अब चारों तरफ खाली पानी है, पानी लोग पता
2: एने नहीं हो पाते, एने होके सब लोग एने तो गर्मी से बुरा हाल। तो भेज देती लोग
1: जाए जाए, बिल्कुल जाए।
2: कितना दिन में जाएगी?
1: अब देखी जब हवा घूम जाओ उन्हें उन्हें बदलिए जाए।
2: अच्छा चले, फिर सोनी जी आयल बनी ना?
1: आयल बनी।
2: पप्पू अकेला गाना बा,
1: गाना
2: काट ठिकाना बा जिंदगानी के,
1: काट ठिकाना बा जिंदगानी के।
2: पप्पू अकेला के हाँ।
1: और गाना के सुना
2: सुना जितना हमारा नाम से जाने वाला महिलो सब लोग सुन लो। हम धनेश कुमार मित्रा दिल्ली से बोलो तो सुना दी है आज गाना। चलिए ठीक है, और कोनो बात नहीं की गाना सुना दी।
1: ओके, गाना रात प्ले करते नहीं, सुनते रहेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मैं सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: रेशमा बोल रही हूं, फुफान पट्टी से।
6: अच्छा, कैसन बानी?
5: ठीक बानी। आप सके?
6: हमने ओके ठीक बानी सन।
5: अरे तो ठीक बा।
6: हाँ,
5: तो अब नाश्ता हो गए?
6: हाँ, नाश्ता हो गए।
5: और सब?
6: और सब तो बस काम होता। और का हुई
5: भारती में?
6: हाँ, रोवा लोग बताई लो, रोवा लोग कैसन बानी? ना रोवा लोग इनके नाश्ता पानी भर की ना?
5: हाँ, नाश्ता तो नहीं हो गए बा।
6: अच्छा,
5: बैठ के फोन लगाओ तो मुझे लागी की ना, लेकिन लाग गई।
6: चलिए तब तो ठीक है बाबा, एक बार में लाग गई लगा। अच्छा,

0: लग जाए, इतना तो बात इतना तो होइए नहीं कैसा करते क्या फोन लग जा।
1: अच्छा
0: लगाओ तो नहीं बहुत ग्यारह बजे तब से लगाओ तो नहीं। अब जाके लागल बा।
1: चलिए ठीक है बाबे, आज कौन सा गाना सुने एक बार?
0: आज गाना सुने के बाद छतरी न खोल बरसात में, हिंदी गाना है के? वही वाला गाना सुना दीजिए।
1: और गाना एक ही सुनाओगे
0: बाजिएगा और सोनी में जितना सुनते हैं सभी।
1: चलिए तब तो ठीक है बार, और गाना प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हो?
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: क्या कहाँ चल रहा हूँ?
1: हाल तो मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हम तो ठीक बने। अच्छा, कौन सा गाना सुनेंगे
0: बताएंगे?
1: अच्छा,
0: गाना
1: क्यों सुना

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone game day bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: गुड आफ्टरनून।
5: गुड आफ्टरनून, हाल ठीक है? अभी तो गुड आफ्टरनून हुआ नहीं है, बस होने वाला है।
6: और सब बताइए?
5: और सब ठीक है।
6: अभी वही टूटा है, मेरे को याद आया था कि आज रिकॉर्डिंग हो रहा है।
5: मौसम पर तो बारिश हो रहा है और इस समय हल्का खुला हुआ है।
6: इधर बारिश हो रहा है क्या अभी?
5: नहीं, इधर खुला हुआ है। अभी रात को तो हुआ था ना?
6: रात को भी सुबह की तरफ अभी 1 घंटा हो गया खोलने। पहचान रहे हैं क्या?
5: गणेश
6: जी, और कहाँ पे सुनील दीदी? कहाँ पे है
5: सुनील दीदी? है इधर ही।
6: मनोरमा दीदी?
5: वो भी उधर ही है, अपना काम में लगे हुए हैं सब कोई।
6: आज भी लगाते लगाते परेशान हो गए, तब कॉल लगा है।
5: अच्छा, तो 1.5 घंटे हुए हैं।
6: अभी 1.5 घंटे बाकी।
5: और 1 घंटे बाकी है।
6: 1 घंटा हो गया, 12:30 बजे बंद होते हैं। धान रुपये हो गया अपना?
5: हाँ, मेरे यहाँ तो हो गया है।
6: खाना वाना खा के आए?
5: खाना हम लोग खा के आते हैं। तो बताइए आज कौन सा गाना सुनिएगा? बर्बादी वाला ट्रेंडिंग चल रहा है, सारे लोग इसके डिमांड में लगे हुए
6: हैं। यही सॉन्ग सुना दीजिए।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: सबसे पहले आपको सुन दीजिए को, नर्मा दीदी को, और पूरा रेडियो जो पंकज सर भी है उसके भी सुनो से जितना लोग सुन रहे सब लोग का रहेगा।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: ठीक है, नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
1: ठीक हुआ
0: तो कहा होता है अभी
1: कुछ ना पार्सल वाली सा।
0: अच्छा, नाश्ता हो गई बाका? चलिए तब तो बढ़िया बा।
1: सगल हो गई बाटे?
0: हाँ
1: ठीक है बा। किना तो नहीं किना
0: करिश्मा?
1: चीन गल बनी और की? ठीक है बा, चीने के चाहे ना। बोलिए और सब ठीक बा?
0: हाँ हाँ, और ये सब ठीक बा।
1: बनी में कहा बनी?
0: के नहीं बनी, अपना काम में लागल बनी।
1: अच्छा
0: तो बताई कौन सा गाना सुने के बाद?
1: हमारा गाना सुने के बाद कबो ना कबो तो हमारे याद आई हो, आज ना तो चार साल बाद आई हो, ये सुने के बाद।
0: अच्छा, और गाना क्यों के सुना हो के बाद?
1: हाँ, सबसे पहले रहुआ के अगले बार सोनी मैम के जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग क्या हम भैया। हाँ
0: अच्छा, चलिए सब ठीक बा। और ये सब ठीक बा ना?
1: हाँ सब ठीक बाटे, रघुआ दुआ से।
0: अच्छा, उन्हीं के दुआ से, भगवान जी के दुआ से?
1: ना, रघुआ दुआ से ठीक बा।
0: अच्छा, चलिए हमारे दुआ तो रो लोग इनके साथ है बाबे।
1: भाइयों फोन करे अगला हाँ। अच्छा
0: ठीक बा, तो गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो रमजन 90.4 FM।
1: ठीक बा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी सर, जो मैं पप्पू यादव मोहल्ला गांधी नगर बधाई हूँ, यूपी वेस्ट।
5: जी कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया, आप कैसी हो?
5: मैं भी अच्छी हूँ।
6: और आप, इधर बारिश होती?
5: बारिश रात को हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, मतलब अभी खुला हुआ है, ठीक है मौसम।
6: अच्छा, खुशनुमा मौसम है। हमारी तरफ तो बहुत बारिश हो रही है अभी।
5: बारिश हो रही है आपके यहाँ?
6: जी।
5: और हो रहा है?
6: ये मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई है, करीबन 7 बजे से, 7 o'clock।
5: चलिए बढ़िया है, मौसम तो ठंडा हो ही गया होगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ ही भेज देंगे।
5: मेरे यहाँ तो मतलब लगातार हो ही रहा है कल परसों से बारिश।
6: अच्छा, तो हमारे लेट चालू हुई है, पहले आप इन्हें एंजॉय कर लीजिए बारिश का। चलिए, बहुत बढ़िया बात।
5: और गाना कौन सा सुनना है आज?
6: जी
5: गाना बता दीजिए कौन सा सुनना है।
6: जी गाने के बोल रहेंगे, एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे।
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
6: जी मूवी का नाम तो पता ही होगा।
5: हाँ।
6: आप ही के लिए डेडिकेट रहेगा ये गाना।
5: ओके
6: जी, और हमारे जितने श्रोता लाइव सुनते हैं और जिनके नाम नहीं जानता उनके लिए, सभी लिए डेडिकेट रहेगा ये।
5: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके
6: साथ।
5: अभी तो शुक्रवार वाला कॉल बाकी है, वो आज बच जाएगा, उसके बाद ये कल या परसों बजेगा।
6: वेट काफी करना पड़ता है।
5: हाँ हाँ, क्योंकि मान लीजिए रिपीट कॉल चला था उस दिन बर्थडे को, तो और शुक्रवार वाला बच गया है तो उसको आज चलाना ही पड़ेगा।
6: उसको चलाना पड़ता है, कल मिलेगी रिकॉर्डिंग अपनी। जी जी, तो सोनी जी को जरूर मैसेज देना, कॉल लगी है तो। ठीक है, है ना?
5: ओके, रेडियो रेंज में कॉल के लिए धन्यवाद।

0: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैम, सबसे पहले तो आपसे शिकायत है।
1: जी बता दीजिए, क्या शिकायत है?
0: शिकायत यही है, क्या हुआ है, मतलब गाना नहीं बज रहा है मेरा।
1: हुआ कुछ नहीं है।
0: तो बजेगा?
1: हाँ हाँ बजेगा।
0: जी मैम, हमको लगता है हमारा कॉल आप लोग भूल जाते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब किसी का नहीं बजा है।
0: ओ, शुक्रवार का जिनको नहीं बजा है मैम। नाश्ता पानी है मैम? नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ नाश्ता पानी हो गया। आपका हो गया?
0: जी मैम, हमारा भी हो गया, इसलिए कॉल किए थे फर्स्ट में कि आपसे शिकायत कर ले।
1: अच्छा, कोई नहीं, शिकायत जो होता है वो कर ही लेना चाहिए।
0: हाँ, और मैम सोनी मैम नहीं आ रही इस शो में?
1: इस शो में?
0: हाँ
1: इस शो में नहीं आ रही है, और योर वॉइस योर ट्रैक शो में आती है।
0: ओके मैम, मुझे तो
1: गाना बता दीजिए कौन सा सुनना है।
0: हाँ गाना तो सुनना है।
1: ओके बता दीजिए।
0: गाने का बोल है? जी मैम, तो गाने का बोल बताए ना। गाने का बोल है फूल कली। फूल कली गाना है ना?
1: फूल कली? हाँ है,
0: उदित नारायण का आवाज है। वही वाला सुनना है मैम।
1: ओके, तो गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, भारत में रहने वाली भारती मैम को, सभा को, सोनी मैम को, सभी सुनने वालों को।
1: ओके, तो फिर चलिए गाना प्ले करें।
0: जी धन्यवाद एडवांस में।
1: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ओके मैम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: कॉल में पकड़ा नंबर।
5: ना अब भी फोन कट डाल हवे तेले राव राई आइए गईल है।
6: तो हम खाजा से रामाजी प्रसाद बोलता ने।
5: हाँ।
6: तो गाना बजाए रिमझिम बरसत बरखा था रिमझिम रिमझिम बरसत सावन के गाना भूला था नहीं रिमझिम बरसता सावन होता।
5: हाँ है। और ये गाना क्यों कितना हो गया बा
6: सब कोई सुने हम सुने जितना रेडियो रिमझिम सुनता सब कोई सुने।
5: अच्छा हाँ हाँ कोई बात नहीं है। तो फिर गाना प्ले करता नहीं सुना रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4
6: बोल रहे
5: ना।
6: अच्छा भारती जी।
5: हाँ
6: चलिए ठीक है। नमस्ते
5: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार भारती जी।
0: नमस्कार,
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी।
0: नाश्ता हो गया आपका?
1: जी नाश्ता हो गया है। बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी काम भी कर रहे हैं। और सब बताइए आप?
0: हम सब भी ठीक हैं, और यहाँ भी सुबह बारिश हुआ था, अभी तो नहीं हो रहा है।
1: उधर तो रात से बारिश हो रहा है गोपाल नगर।
0: पूरा बारिश हो रहा है इधर,
1: पूरा रात पानी हुआ है। बच्चे लोग स्कूल नहीं गए, गाड़ी नहीं आया बारिश। गाना सुनवा दीजिए पवन सिंह का, बोल बम का गाना सुनवा दीजिए पवन सिंह का।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे, सारे आदमी जीत रहे हैं, सारे सुनेंगे।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्ते।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 8009994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: Hello.

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: मैया।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: प्रेम से बोलो विष्णु।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।